0: उनसे प्रेम तभी कर सकेंगे ना, जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है मोनिका,
1: क्या
0: कि परिचय के बिना प्रेम नहीं होता, है ना सच?
1: बिल्कुल सही।
0: तो लीजिए, आज की कड़ी में अपने श्रोताओं का परिचय हम करवा रहे हैं एक महान वृक्ष से।
1: और वो वृक्ष कौन सा है?
0: वो वृक्ष है देवदार का वृक्ष।
1: सुनीता जी, मैं जानती हूँ इस पेड़ के बारे में। ये पेड़ पहाड़ों का वृक्ष है जहाँ ठंडक खूब पड़ती है।
0: कितने खूबसूरत होते हैं ना?
1: हाँ।
0: मैंने तो देखा भी है।
1: अच्छा।
0: हाँ।
1: वहाँ के पर्यावरण तंत्र और संस्कृति का यह अभिन्न अंग है। भारत का पश्चिमी हिमालय क्षेत्र इसका मूल स्थान माना गया है। यहीं से ये वृक्ष बाकी क्षेत्रों में फैला है। हिमालय में भी अधिकतर ये 1500 से 3200 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है।
0: अच्छा मोनिका,
1: क्या
0: तुम ये जानती हो कि देवदार का वैज्ञानिक नाम क्या है?
1: नहीं, क्या आपको पता है?
0: भाई मुझे मालूम है, तभी तो मैंने पूछा। तो चलो तुम्हें भी और अपने श्रोताओं को भी बता दूं कि देवदार का वैज्ञानिक नाम है सेड्रस देवदारा। ये जो पेड़ है ना, ये सीधे तने वाला एक शंकुधारी पेड़ है, यानी नीचे ये चौड़ा होता है और ऊपर की ओर सिकुड़ते हुए अंतिम बिंदु पर बिल्कुल नुकीला सा हो जाता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है ना।
1: माने कि ये देवदार सुनने में जितना इंटरेस्टिंग है, उसका आकार भी उतना ही इंटरेस्टिंग होता है।
0: हाँ, आइसक्रीम के कोन की तरह ये आकार में फर से मिलता जुलता है, और इसकी जो लकड़ी है वो हल्की, मजबूत और तीखी सुगंध वाली होती है।
1: कवियों और साहित्यकारों को देवदार सदा से लुभाता आ रहा है।
0: मोनिका बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और पता है बहुत से गीतों में भी इसका जिक्र आता है।
1: अच्छा।
0: वो गीत तुमने सुना है, ये कौन चित्रकार है?
1: बिल्कुल सुना है, बहुत ही प्रसिद्ध गीत है।
0: हाँ, उसमें भी एक पंक्ति आती है, ये वृक्ष देवदार के, है ना, मुकेश ने गाया है।
1: हिमालय क्षेत्र में एक शांत तपस्वी की तरह ये मानो अपनी साधना में लीन रहता है। आधुनिक हिंदी के महाकवि जयशंकर प्रसाद ने इसका स्मरण अपनी कालजयी रचना कामायनी में किया है। प्रसंग प्रलय का है, जब आदि पुरुष मनु महामत्स्य द्वारा बचाए जाने उपरांत हिमालय में भटक रहे थे। वे लंबे शरीर वाले थे और देवदार भी लंबा वृक्ष होता है। वे भी इस समय हिमालय में ही थे और देवदार भी हिमालय में ही मिलता है, अतः स्थान साम्य और आकार साम्य के आधार पर कवि ने उनकी तुलना देवदार से करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। उस तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े।
0: हाँ मोनिका, कामायनी की ये पंक्ति मुझे भी याद आ गई। अगर रचनाकार पहाड़ी क्षेत्र का हो तो वो देवदार के वृक्ष का जिक्र करना कभी नहीं भूलता है। बात कोई भी हो, घुमा फिराकर वो देवदार तक पहुंच ही जाता है। उसके व्यक्तित्व में जन्म से ही इतना समाया है ये वृक्ष कि किसी न किसी रूप में उसकी चर्चा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, जैसा कि हमारा सांस लेना।
1: उत्तराखंड के कवि हैं सुबीर रावत, शायद आपने उनका नाम सुना होगा।
0: हाँ मोनिका।
1: अपनी प्रियसी की याद में वे कविता लिखते हैं। शीर्षक है, आना फुर्सत में कभी मेरे पहाड़ में। उनकी प्रियसी उनके कल्पना संसार में एक फागुनी शाम को पहाड़ की हरी भरी वादियों में आती हैं, वहां जहां ढेर सारे देवदार के वृक्ष हैं। तब जब शर्माकर वो दुपट्टे से अपना मुख ढांकती हैं, तो ऐसा लगता है कि पूनम का चांद चीड़ और देवदार के घने वृक्षों की आड़ में छुप गया हो।
0: कितनी सुंदर कल्पना ना।
1: इसी कल्पना को ध्यान में रखते हुए ये कविता सुनिए। मंद मंद मुस्कान उस फागुनी शाम की, खिल उठे हों बसंत हजारों जैसे, रंग बिरंगे फूलों से मेरी लकदक पहाड़ में। ढक देना शर्मा कर कभी यूं ही मुंह दुपट्टे से, छिप गया हो चांद पूनों का जैसे, घनघोर मेरे चीड़ देवदारू के पहाड़ में।
0: कितनी सुंदर कविता ना मोनिका। मैं तो खो गई बिल्कुल, मुझे सारा दृश्य नजर आने लग गया। लेकिन मनुष्य की निर्मम लोभ वृत्ति ने बाकी वृक्षों के समान देवदार को भी बख्शा नहीं। हालांकि इसका परिणाम भी मिला है उसे, पहाड़ों का इकोसिस्टम हिल गया है। कितनी आपदाएं आ रही हैं, पहाड़ों के सरकने की खबर हम सुनते हैं, उनके ढहने की खबर हम सुनते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: खैर, देवदारों की कटाई एक कवित्री कविता वाचक नवि को विह्वल कर देती है। उनकी कुछ पंक्तियां सुनो।
1: सुनाइए।
0: वो कहती हैं, रहस्य के सारे देवदार काट डाले हैं बटोही ने, बाहें पसारे जो हिम झेलते थे पी लेते थे कोहरा।
1: सुनीता जी, हम बहुत देर से देवदार के पेड़ की बात कर रहे हैं।
0: हाँ?
1: लेकिन क्या आपको पता है कि ये नाम देवदार पड़ा कैसे?
0: बिल्कुल पता है मोनिका, और मैं चाहती हूँ कि ये जो जानकारी हमें है वो अपने श्रोताओं को भी हम दे दें कि आखिर इस पेड़ का नाम देवदार क्यों पड़ा।
1: बिल्कुल, शुरुआत मैं करती हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा।
0: बिल्कुल।
1: आज हिंदी में हम जिसे देवदार कहते हैं उसका मूल शब्द है देवद्रुम, यानी देवताओं का वृक्ष। पौराणिक उल्लेख मिलता है कि सत्यभामा के हट करने पर भगवान श्री कृष्ण कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर उठा लाए थे। इससे कल्प तरु से हीन देवलोक श्री विहीन हो गया।
0: हाँ।
1: तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, कल्प तरु के बिना देवलोक श्रीहीन हो गया है। जैसा कि कृष्ण का स्वभाव था, वे हौले से मुस्कुराए और बोले, जहाँ श्री अर्थात लक्ष्मी नहीं रहेंगी वो स्थान तो श्रीविहीन होगा ही। जब तीनों श्री लक्ष्मी सरस्वती और काली साक्षात विग्रह रूप में सत्यभामा रुक्मणी और जामवंती के रूप में धरती पर है तो स्वर्ग में श्री कैसे रह सकती हैं?
0: बिल्कुल। तब निर्णय हुआ कि कल्प वृक्ष स्वर्ग को तभी वापस किया जा सकता है जब उसके जैसे ही प्रभाव वाला एक वृक्ष तैयार करके देवता लोग पृथ्वी लोक को प्रदान करें। इस पर समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर जो वृक्ष बनाया उसका नाम देवद्रुम पड़ा। बाद में यवन प्रभाव में ये नाम बिगड़कर देवदारु हो गया। इस देवदारु से ही आज का देवदार बना है।
1: यानी देवद्रुम ही देवदारु है
0: और देवदारु ही देवदार है। याद करो, कुछ देर पहले जयशंकर प्रसाद की कामायनी से एक पंक्ति तुमने पढ़ी ना?
1: हाँ।
0: उसमें देवदारु शब्द आया। इसमें इस वृक्ष के लिए देवदारु शब्द का प्रयोग किया था जयशंकर प्रसाद ने, न कि देवदार का। जयशंकर प्रसाद जैसे भाषाई शुद्धता के प्रति विशेष सजग कवि से यही अपेक्षा थी।
1: सुनीता जी, प्राचीन भारतीय संस्कृति में भी देवदारु की चर्चा मिलती है। देवदारु देवताओं का वृक्ष है, ये हिमालय का वृक्ष है, शिव का प्रेम है इस पर।
0: बिल्कुल।
1: इन कारणों से भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही इसकी महिमा मिलती है। वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में इसका वर्णन मिलता है।
0: हाँ।
1: प्राचीन काल में शिव भक्त आश्रम बनाकर हिमालय के जंगलों में रहते थे। उनकी पहली प्राथमिकता वे स्थान होते थे जहाँ देवदारों के घने वन होते थे।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने मोनिका।
1: शिव को प्रसन्न करने के लिए ये तपस्वीगण देवदारों के नीचे बैठकर ही तपस्या करते थे। उनका विश्वास था कि इससे शिव जल्दी प्रसन्न होंगे। इतना ही नहीं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में एक विशेष शब्दावली भी मिलती है, दारू कावन, जिसका अर्थ है देवदारू के वृक्षों का जंगल।
0: मोनिका।
1: हाँ?
0: तुमने बात की प्राचीन भारतीय संस्कृति में देवदारू के जिक्र की, है ना? रूसी संस्कृति में भी देवदार का जो वृक्ष है उसका खास स्थान है। श्रोताओं, जैसा कि आपने सुना ही है कि देवदारू ठंडे स्थानों पर उगने वाला वृक्ष है। यही कारण है कि भारत और दुनिया के उन तमाम जगहों पर ये मिलता है जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है। भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में तो पाया ही जाता है, साथ में नेपाल, तिब्बत, उत्तरी पाकिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों और रूस तक में ये वृक्ष मिलता है।
1: रूस चूंकि एक ठंडा देश है इसलिए ज्यादातर वृक्ष शंकुधारी होते हैं, जैसे कि सनोबर, लार्च और देवदार। यहाँ के लोग अपने घरेलू चिकित्सा पद्धति में भी इन वृक्षों का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साइबेरिया के इलाके में देवदारू खूब मिलते हैं। इसकी गोंद का इस्तेमाल इस देश में घरेलू चिकित्सा के लिए किया जाता है। रूसी भाषा में इसे जीवित्सा कहते हैं। यानी जीवन देने वाली। यहाँ रूसी भाषा और संस्कृत भाषा का साम्य देखा गया है। सुनीता जी, जीवित्सा का शब्द देखकर ऐसा लगता नहीं कि इसमें हमारी संस्कृत भाषा भी मिली हुई है?
0: बिल्कुल, मुझे बिल्कुल यही लगा कि ये संस्कृत का शब्द है।
1: वही अर्थ और वही ध्वनि। इससे उस थ्योरी को बल मिलता है कि यूरोपीय आर्य और भारतीय आर्य मूलतः एक ही है, जो बाद में चलकर दो शाखाओं में विभक्त हो गए। ये एकता न केवल भाषा में बल्कि संस्कृति में भी मिलती है। देवदारू का जो महत्व भारत में है, वही रूस में भी है।
0: बिल्कुल मोनिका। खैर, थोड़ा सा हम भटक गए, विषयांतर हो गया। तो चलो अपने मूल प्रसंग पर लौटते हैं।
1: बिल्कुल,
0: देवदारू के गोंद की बात हो रही थी, है ना? देवदारू के गोंद को जीवित्सा इसलिए कहा जाता है मोनिका, क्योंकि ज्यों ही किसी घाव पर तेल मिलाकर ये गोंद लगाया जाता है, घाव तुरंत भर जाता है।
1: अरे वाह।
0: घाव चाहे कैसा भी हो, चीरा लग गया हो, कट गया हो, जल गया हो, या घाव में पस पड़ चुकी हो या सड़ गया हो, कोई बात नहीं, जीवित्सा को वनस्पति तेल में घोलकर उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: यानी कि बहुत ही लाभकारी है ये।
0: बहुत ही लाभकारी। यहाँ तक कि रूस के जो पुराने लोग थे ना, वो टूटी हड्डी पर भी ये गोंद लगाते थे और इससे हड्डी जुड़ जाती थी।
1: अरे वाह, ये तो चमत्कार जैसा है।
0: प्रकृति तो अपने आप में एक चमत्कार है ही।
1: इस गोंद की खासियत ये है कि पानी डालने पर भी ये नहीं घुलती, जबकि वनस्पति तेल डालने से घुल जाती है। यहाँ तक कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा हो, वनस्पति तेल मिलाकर इस गोंद को लगाइए, दर्द फौरन ही उड़नछू हो जाता है। गले में दर्द हो या फिर टॉन्सिल्स बढ़ गए हो, रूसी लोग जीवित सा चूस कर इसको ठीक कर लेते हैं।
0: क्या बात है, देखो प्रकृति के रहस्य कितने निराले हैं ना।
1: बिल्कुल,
0: वही गोंद पानी में नहीं घुलता और वही गोंद तेल में डालने पर घुल जाता है।
1: ये तो अचंभे में डालने वाली बात है।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत से अचंभे प्रकृति में छुपे हुए हैं मोनिका। और पता है
1: क्या,
0: साइबेरिया के लोग देवदारू की गोंद को अपने दांत दर्द और मसूड़े के दर्द को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। पेट में फोड़ा हो जाने पर भी इससे बहुत लाभ होता है। देवदारू की गोंद को जलाकर पैदा की गई आग को भी रूस में बहुत पवित्र माना जाता है।
1: अच्छा।
0: फिर वही सांस्कृतिक साम्य जिसकी तुमने बात की, कि भाई भाषा जीवित्सा एक शब्द सुनकर लगता है कि संस्कृत और रूसी भाषा बिल्कुल एक है, उसी तरह से ऐसा नहीं लगता कि इसकी लकड़ी की अग्नि को वो इतना पवित्र मानते हैं। और हमारे यहाँ यही बात तो हवन के साथ है ना।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। हमने जाना रूस में इस पेड़ के महत्व को, आइए अब जानते हैं कि लद्दाख संस्कृति में देवदार का कितना महत्व है।
0: मतलब देवदार के वृक्ष के साथ हम अलग अलग देशों की यात्रा पर हैं क्या?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। लद्दाख क्षेत्र में स्थानीय वन्य चिकित्सकों को आमची कहा जाता है।
0: अच्छा।
1: ये आमची देवदार के फूलों एवं पत्तियों के एक खास कॉम्बिनेशन के एक यंत्र का निर्माण करते हैं, जिससे अनेक प्रकार के कठिन रोग का सफल एवं स्थायी इलाज हो जाता है। पश्तो भाषा की एक किताब है विल्लाख चासू, इसमें लद्दाख क्षेत्र की एक पौराणिक मान्यता का उल्लेख मिलता है कि आईसी, मंचूक, खंच, डायला और खिचास्तो नक्षत्र में जन्म लेने वालों पर इस वृक्ष के पत्तों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पांचों नक्षत्र संस्कृत के हिसाब से रेवती, अश्विनी, मघा और अश्लेषा हैं, जिन पर देवदार यंत्र का असर नहीं होता।
0: ये भी दूसरा रहस्य। देखो मोनिका, ये तो बात हो गई लद्दाखी संस्कृति में देवदार की।
1: हाँ।
0: अब मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें लिए चलूँ स्विट्जरलैंड।
1: स्विट्जरलैंड, वाओ।
0: कैसी बांछे खिल गई ना तुम्हारी। भाई स्विट्जरलैंड का नाम सुनते ही आंखों के सामने कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य आ जाते हैं।
1: बिल्कुल, प्राकृतिक छटा छा जाती है आंखों के सामने।
0: दरअसल स्विट्जरलैंड के पर्यटन को भी बहुत अच्छी तरह से निखारा है देवदारू ने। स्विट्जरलैंड पर्यटन के लिहाज से पूरी दुनिया में क्या स्थान रखता है, ये हम सब जानते हैं। तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मुस्कुराहट बता रही है। है ना? यहाँ के पर्यटन के आकर्षण के पीछे यहाँ की प्राकृतिक छटा है, जिसे यहाँ के लोगों ने बड़े जतन से सहेजा हुआ है, हमारी तरह तहस नहस नहीं किया है। खूबसूरत लैंडस्केप, बर्फ से ढके हुए पहाड़ और हरी भरी वादियां, किसी का भी मन मोह लेती हैं।
1: सुनीता जी, आपने ये सब बातें बोल के तो मुझे सच में स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया। वैसे कहते हैं कि यहाँ केवल सूरज नहीं उगता बल्कि पहाड़ भी उगते हैं। स्विस आल्प्स का संसार जंगलों के सौंदर्य का खजाना समेटे हुए है। पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ 4,000 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हैं, जो आसमान में धस्ती सी नजर आती हैं।
0: फिल्मों में अक्सर हम देखते हैं, है ना।
1: पर्वत से झर झर झरते झरनों का संगीत कानों को झंकृत कर देता है। और इस पृष्ठभूमि में जब हवा में झूमते पाइन व देवदारू के वृक्ष नजर आते हैं तो सौंदर्य का मानो रहस्य लोग रच जाता है।
0: और इस रहस्य लोग में हमारा जो मन है वो बिल्कुल खो जाता है। वैसे मोनिका, क्या तुम्हें पता है कि क्यों इस देवदार का आकार कोन की तरह होता है?
1: नहीं।
0: मैं बताती हूँ।
1: बताइए।
0: दरअसल प्रकृति से बढ़कर कोई वैज्ञानिक नहीं है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तभी तो अलग अलग जगह की अलग अलग जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर उसने वहाँ के जीव जंतुओं वनस्पतियों की डिजाइनिंग की है। है ना। देवदारू के जो शंकु यानी कोण के आकार की मैं बात कर रही थी ना,
1: हाँ?
0: उसका कारण भी यही है।
1: अच्छा।
0: चूंकि ये ठंडे स्थानों का वृक्ष है इसलिए पूरे वृक्ष का एक शंकु की तरह विकास और इसकी पत्तियों का नुकीलापन इस वृक्ष को और इसकी पत्तियों को ठंडक से बचाता है।
1: ठंडक की बात हो रही है और जैसा कि आपने मुझे पहले बताया था कि इसका जो आकार रहता है वो आइसक्रीम के कोन की तरह होता है, तो कहीं आइसक्रीम के कोन का आकार देने से पहले उन्होंने इस वृक्ष को तो नहीं देख लिया था?
0: ये एक दूसरा ही प्रश्न है और एक अलग चर्चा का विषय है।
1: चलिए, हमने बात की कि देवदारू के वृक्ष का आकार कोन की तरह क्यों होता है, आइए अब बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में। टिम्बर इंडस्ट्री में देवदारू एक बहु उपयोगी वृक्ष है, क्योंकि इसकी लकड़ियाँ टिकाऊ होती हैं और पानी में सड़ती नहीं है। हालांकि ये उतनी मजबूत नहीं होती। न सड़ने वाले गुणों के कारण श्रीनगर के हाउस बोट्स प्रायः इसी के बने होते हैं। टिकाऊपन और न सड़ने वाले गुणों के कारण ब्रिटिश काल में तो हर तरह से कंस्ट्रक्शन वर्क में इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है।
0: बिल्कुल, देवदार की लकड़ी में क्लोज ग्रेन्स होते हैं, इसकी वजह से इसमें फाइन क्लास की पॉलिश हो जाती है। यही कारण है कि इसे गोल्ड कोन भी कहा जाता है। मंदिरों को बनाने में बहुत पहले से इसका इस्तेमाल होता रहा है।
1: देवदार के फूल बड़े ही दुर्लभ होते हैं, यही कारण है कि ऐसे इने गिने देवदार वृक्ष जिन पर फूल खिलते हैं उन्हें सरकार ने अति सुरक्षित श्रेणी में घोषित कर रखा है। यहाँ तक कि इन फूलों की कालाबाजारी भी होती है।
0: मतलब फूलने वाले देवदार के वृक्ष बहुत कम होते हैं, दुर्लभ होते हैं। यानी ये जो आइसक्रीम का कोन है वो देखने में बहुत खूबसूरत है लेकिन बहुत तरसा कर फूलता है। इस संबंध में मोनिका, हाँ? एक पौराणिक उल्लेख भी मिलता है।
1: और वो क्या है भला?
0: भगवान शिव ने ये कह रखा था कि लोग यदि इस देव वृक्ष का आदर नहीं करेंगे और इस पर अत्याचार करेंगे तो इस पर फूल लगने बंद हो जाएंगे।
1: यानी इससे ये पता लगता है कि इंसान ने इस वृक्ष पर कितना अत्याचार किया है, तभी तो इस पर फूल खिलने कम हो गए हैं।
0: इसे हमने कम सहेजा, ये तो जाहिर है।
1: सुनीता जी, क्या आपको पता है कि वृक्षों से हमारा करियर भी बन सकता है?
0: बड़ी गहरी बात तुमने की है।
1: आज करियर की चुनौती बड़ी है लेकिन चिंता की बात नहीं, वृक्ष प्रेम को अगर आप चाहें तो अपना करियर भी बना सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी विशेषज्ञता स्थापित हो। यदि आपने 12वीं तक साइंस पढ़ा है तो आप BSc इन फॉरेस्ट्री का कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद अवसरों की भरमार हो जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ओर लोगों का भी ज्यादा ध्यान नहीं है, अतः काम अभी आसानी से मिल जाता है।
0: अगर और अधिक ऊंचाई पर जाना चाहते हैं आप तो इसी स्ट्रीम में मास्टर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, मास्टर इन फॉरेस्ट इकोनॉमी, मास्टर इन फॉरेस्ट वुड साइंस टेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज इसमें उपलब्ध हैं। अगर ये कोर्स आप कर लेते हैं श्रोताओं, तो वृक्षारोपण के क्षेत्र में सक्रिय बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोजेक्ट्स में बतौर प्रबंधक आपको जॉब ऑफर कर सकती हैं। वन्य जीव और वन संरक्षण से जुड़े NGOs में भी फॉरेस्ट्री विशेषज्ञों की मांग है।
1: अगर पर्यावरण के प्रति आपकी रुचि है तब तो ये कोर्स आपके लिए एक पंथ और दो काज का काम करेगा। हरियाली के बीच करियर चलेगा और फिर क्या चाहिए। आपकी उम्र में कम से कम 10 साल का इजाफा तो हो ही जाएगा।
0: मतलब फायदे ही फायदे, है ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुनीता जी चलिए हम भी चलते हैं ये कोर्स करने के लिए और फिर रहेंगे बड़े ही आराम से हरियाली के बीच में।
0: बिल्कुल, और सिर्फ कोर्स ही नहीं करना है मोनिका, कोर्स तो करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ मैं, वो जरूर करूंगी, लेकिन साथ में हमें वृक्षारोपण भी करना है ताकि हमारा पर्यावरण बिल्कुल संरक्षित रहे, सुंदर रहे। और जो हमने शुरू में बात की थी ना कि आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी है, तो हम पेड़ों को गले लगाएं, अपने हाथों का बहुत ही केयरिंग स्पर्श उसको हम दें, तभी बात बनेगी।
1: बिल्कुल, और साथ ही ये वादा करें कि हर साल कम से कम एक वृक्ष जरूर बोएंगे।
0: तो इसी वादे इसी इरादे के साथ अनुमति दीजिए अपनी दोस्त सुनीता सिंह
1: और मोनिका तिवारी को।
0: लेकिन चलने से पहले श्रोताओं को बता दें कि आज का कार्यक्रम था एक चर्चा पेड़ों के नाम, जिसमें हमने चर्चा की वृक्ष देवदार की। तो श्रोताओं बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद,
1: देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब समय है कार्यक्रम भारत भारती का।
1: महाराज

निमाण का सांस्कृतिक इतिहास अत्यंत समृद्ध और गौरवशाली है। यहाँ का जनजीवन कला और संस्कृति से संपन्न है। विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियों से घिरा यह अंचल नर्मदा नदी का पावन तट पाकर यहाँ के जनजीवन को आनंद विभोर करता रहता है। तो अब बिना देर किए आनंद लेते हैं निमाणी लोक गायन का। कलाकार हैं शिव गुप्ता और उनके साथी।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: एक प्रस्तुत है संत सिंगाजी निमाड़ के, संत निर्गुणी पंथ के संत के विचारों को निमाड़ी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम भारत भारती में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।
1: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

निमाड़ का सबसे फेमस गीत लोकगीत, जब भाभी के घर ननंद जाती है तो भाभी अपने बच्चे घर, जब बच्चा होता है निमाड़ में, तो कुछ खिलौना लेके जाती है

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: सबरी को मतंग ऋषि ने कहा था कि तेरे आंगन में राम आएंगे। सबरी ने इंतजार किया कि मेरे राम मेरे आंगन में आएंगे, प्रभु का इंतजार किया।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट देखत देखत,
0: ए राम कब आओगे।
1: अरे हम बूढ़ी हुई गई रे वाट।

0: एकता फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: एक लड़का लड़की आपस में बात कर शादी का पहला, उनकी कल्पना कवि की है।

0: की।
1: आज कार्यक्रम भारत भारती में आप आनंद ले रहे थे निमाणी लोक गायन का, जिसे प्रस्तुत किया शिव गुप्ता और उनके साथियों ने। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: मैं हूं हरि प्रसाद चौरसिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
3: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: शुभ संध्या। 90.8 MHz पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। शाम के 5 बजे हैं, अब से लेकर रात्रि 10 बजे तक हमारा प्रसारण यूं ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुने अक्षय निधि।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त से वाचन। ऋषि हैं परुच्छेप देवोदासी, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप अनुष्टुप गायत्री धृति और अत्यष्टि।
1: उभे पुनामि रोदसी रितेन द्रुहो दहामि सम मही रनिंद्राह अभिव्लव्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थानं परि तृणहा अशेरन। जो इंद्रदेव यज्ञ की शक्ति से दोनों लोकों को पावन बनाते हैं, हम उन इंद्रदेव के विरोधियों और अति भयंकर द्रोहियों का दहन करते हैं। जहां बड़ी संख्या में शत्रु मारे जाते हैं, वहां मृत शरीरों से युद्ध भूमि श्मशान जैसी प्रतीत होती है। अभिव्लग्या चिदद्रिवः शीर्षा यातु मती नाम छिंधी वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप हिंसक शत्रुओं के अति निकट जाकर अपनी विशाल सैन्य शक्ति से उन्हें पददलित करें। अवासाम मघवंजहि शर्धो यातुमतीनाम वैलस्थान के अर्म के महावैलस्थे अर्म के। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप मृतक मनुष्यों के घृणित स्थान एवं घृणित श्मशानों के समान इस हिंसक सैन्य शक्ति को अपनी सामर्थ्य से विनष्ट करें। यासाम तिस्रह पंचाशतो भिवलंगैरपावपः तत्सु ते मनायति तकत्सु ते मनायति। हे इंद्रदेव, जिन शत्रु सेनाओं के त्रिगुणित 50 अर्थात 150 सैनिकों को चारों ओर से घेर कर युद्ध की चालों से विनष्ट किया, आपके वे पराक्रमी कार्य प्रशंसनीय हैं। भले ही आपके लिए उनकी कोई विशेष महत्ता न हो। पिशंग भ्रष्टि मभृणम पिशाचिमिंद्र समृण सर्वं रक्षो निबर्हय। हे इंद्रदेव, आप क्रोधाग्नि से लाल हुए शस्त्रधारियों एवं विशालकाय पिशाचों को नष्ट करें। आप समस्त राक्षसी शक्तियों का संहार करें। अवर्मह इंद्र दाद्रिहि श्रुधि नह शुशोच ही द्यौः क्षा न भीषाम अद्रिवो घृणान्न भीषाम अद्रिवः। शुष्मन्तमो हि शुष्मिभिर् वधै रुग्रेभिरीयसे अपूरुषघ्नो अप्रतीत शूर सत्व भिस्त्रि सप्तैः शूर सत्वभिः। हे वज्रधारी इंद्रदेव, आप हमारे निवेदन पर भयंकर राक्षसों की सामर्थ्य को क्षीण करके उनका संहार करें। दिव्यलोक भी पृथ्वी पर हो रहे अत्याचारों से शोकातुर हो गए हैं। हे वज्रधारी इंद्रदेव, जिस प्रकार अग्नि द्वारा वस्तुएं भस्म होती हैं, वैसे ही आपके भय से शत्रु दुखी हैं। बलशाली सेना को सुदृढ़ शस्त्र बल से सुसज्जित करके आप शत्रु दल के समीप जाते हैं। हे अग्रगामी वीर, आप अपने शूरवीरों को सुरक्षित करने हेतु तत्पर रहते हैं। हे शूरवीर इंद्रदेव, आप 21 सेनाओं के साथ अर्थात विशाल सैन्य शक्ति के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते हैं। वनोति ही सुन्वनक्षयम् परीणसः सुन्वानो हिष्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विषः सुन्वान इत्सि शासति सहस्रा वज्यव्रतः सुन्वाना येन्द्रो ददात्या भुवम् रईम् ददात्या भुवम्। सोमरस निचोड़कर तैयार करने वाले यजमान सभी ओर फैले हुए दुष्टों और देव विरोधियों को दूर करते हैं। मुक्त इंद्रदेव यजमानों को सहस्रों प्रकार के धन प्रदान करते हैं, वे उन्हें वैभव प्रदान करते हैं।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 133वें सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत।

निष्क्रियता से बेहतर है सक्रिय रहना। इसीलिए अपने जीवन में सभी कार्य संपन्न करें। यदि जीवन में सक्रियता नहीं रहेगी तो ईश्वर से हमें मिला शरीर भी किसी काम का नहीं है।

अनेक खंड, ब्रह्मांड और लोकों की रचना परमेश्वर ने की है। संसार के मनुष्यों की किसी भी भाषा में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो इसका बखान कर सके। भाषा द्वारा परमेश्वर को पाना असंभव है।

परमेश्वर की रचना का वर्णन करते हुए हजारों या लाखों के अंकों को परिभाषित नहीं किया जा सकता। परमेश्वर की बनाई सृष्टि इतनी अनंत है कि इसकी गणना करते हुए संख्या के अंक ही समाप्त हो जाते हैं।

जो मनुष्य अपने कर्म फल में आसक्ति को त्याग देता है और अपने सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण करता है, वह कमल के पत्ते की तरह पाप रूपी जल से कभी भी लिप्त नहीं होता।

ऐसा मुमकिन है कि हम जिन चीज़ों को पसंद करते हैं वो हमारे लिए सही नहीं हों, और जिन चीज़ों को ना पसंद करते हैं वो हमारे लिए अच्छी हों। सही या गलत, इसे हमेशा हमें परमेश्वर पर ही छोड़ देना चाहिए।

केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल पर किसी का वश नहीं है। इसीलिए मनुष्य को कर्म फल की आसक्ति में नहीं फंसना चाहिए, साथ ही अपने कर्म का त्याग भी कभी करना नहीं चाहिए।

प्रभु अनंत गुण सागर हैं, उनकी रचना अपार है। जो जो हम उनके गुणों पर विचार करते हैं, उनकी महानता का अनुभव बढ़ता जाता है। जगत में उनके तुल्य महान न कोई है और न कोई होगा।

हमें सदा प्रभु का स्मरण करने के साथ ही अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए। इस तरह ईश्वर में अर्पण किए मन और बुद्धि से होकर निसंदेह हम ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद सुनिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: स्वाधीनता संग्राम और देशभक्ति को पूर्णतः समर्पित देश का पहला रेडियो चैनल।
1: स्वाधीनता संग्राम से जुड़े रणबांकुरों की वीर गाथा,
2: देशभक्ति के गीत सुनाता
1: रेडियो आजाद हिंद,
2: देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई। रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है। तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

अपने देश की स्थिति परिस्थिति से सरोकार, देश की खुशहाली के लिए प्रयास, देश की समृद्धि में योगदान, अपनी परंपराओं के प्रति आस्था और अपनी संस्कृति के लिए सम्मान, ये कुछ बातें हैं जो एक व्यक्ति के राष्ट्रभक्त होने का उद्घोष करती हैं। भारत प्रेम में डूबी एक ऐसी ही महान विभूति थे वराहनेरी वेंकटेश सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्हें वीवीएस अय्यर के नाम से भी जाना जाता है। वीवीएस अय्यर एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रबल लड़ाई लड़ी थी। उनका मानना था कि अगर अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ना है तो इसके लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक है, और इसी मार्ग पर चलकर उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण और अत्याचार के प्रतिरोध में अत्यंत उग्र प्रदर्शन किया। उनकी इन्हीं क्रांति गतिविधियों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने उनके नाम गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया। इन परिस्थितियों में वो निर्वासित होकर पौंडीचेरी चले गए, जो उस समय फ्रांसीसी शासन के अधीन था। वीवी सुब्रमण्यम अय्यर ने न केवल ब्रिटिश राज को ललकारा था, बल्कि अपनी लेखनी से उन्होंने तमिल साहित्य को भी नई ऊंचाइयां प्रदान की। उनका जन्म 2 अप्रैल सन 1881 को तमिलनाडु के तिरुचि के पास वराहनेरी नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही अपने आसपास के वातावरण को देखकर वो विचलित हो जाया करते थे और उनके हृदय में स्वतंत्रता की कामना पलने लगी।

एक साधारण तमिल परिवार में जन्मे वीवी सुब्रमण्यम अय्यर की प्रारंभिक शिक्षा तमिल और संस्कृत भाषा में हुई। आगे चलकर उन्होंने अंग्रेजी, फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में भी महारत हासिल की। आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज में अध्ययन किया। उन्होंने इतिहास, राजनीति और लैटिन में बीए किया। कानून की पढ़ाई में उनकी विशेष रुचि थी। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से प्लीडर यानी जूनियर वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और तिरुचि की जिला अदालतों में अभ्यास भी किया। इसके बाद वो रंगून गए तथा एक अंग्रेजी बैरिस्टर के चैम्बर में जूनियर के रूप में अभ्यास करना शुरू किया। लेकिन उनका मन अब भी बैरिस्टरी की पढ़ाई के लिए ललायित था। इसी उद्देश्य से वीवी सुब्रमण्यम अय्यर लंदन चले गए तथा बैरिस्टर बनने के लिए वहां पूरी लगन से पढ़ाई शुरू की। यही वो समय था जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये भारतीय छात्रों के लिए एक छात्रावास की तरह तो काम करता ही था, यहाँ राष्ट्रवादी गतिविधियों की हलचल भी खूब रहा करती थी। लंदन में रहते हुए वीवी सुब्रमण्यम अय्यर इंडिया हाउस के सदस्य बन गए। यहीं उनकी भेंट वीर सावरकर से हुई और उनके जीवन की दिशा बदल गई। वीर सावरकर के साथ मिलकर उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में, विशेष रूप से पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में विरोध प्रदर्शन आयोजित करवाया। वीवी सुब्रमण्यम अय्यर ने वीर सावरकर द्वारा मराठी में लिखी गई पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957। इसे गुप्त रूप से उन्होंने भारत में प्रसारित भी किया। इसके साथ ही उन्होंने इस पुस्तक का तमिल में भी अनुवाद किया, जिसे पौंडीचेरी में सुब्रमण्यम भारती द्वारा संचालित इंडिया पत्रिका में प्रकाशित किया गया। हालांकि उन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टर ऑफ लॉ की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्होंने डिग्री लेने से इनकार कर दिया। सन 1910 में लंदन और पेरिस में अराजकतावादी षड्यंत्रों में शामिल होने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। इन परिस्थितियों में वो पेरिस चले गए, लेकिन यहां भी उनका रहना सरल नहीं था। अंततः 4 दिसंबर 1910 को वेश बदलकर वो पौंडीचेरी आ गए, जो उन दिनों फ्रांसीसी शासन के अधीन था। लेकिन यहां भी वो चुप नहीं बैठे। अंग्रेजी राज के विरुद्ध एक महासंग्राम जारी रहा।

वीवी सुब्रमण्यम अय्यर 10 वर्षों से अधिक समय तक पांडिचेरी में रहे। यहाँ उन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्यों को और तेज कर दिया था। यहाँ अरविंद घोष और सुब्रमण्यम भारती जैसे महान क्रांतिकारियों के साथ वो सक्रिय रहे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना को और आगे बढ़ाया। इसके लिए अनेक युवाओं को प्रशिक्षित भी किया। एक ऐसी ही घटना थी 17 जून 1911 की, जब तिरुनेलवेली के अत्याचारी कलेक्टर ऐश का वध कर दिया गया। रेल यात्रा के दौरान इस घटना को अंजाम दिया था महान क्रांतिकारी वंचीनाथन ने। वंचीनाथन को वीवी सुब्रमण्यम अय्यर ने ही प्रशिक्षित किया था। ये घटना ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ा झटका थी। 22 सितंबर 1914 को जर्मन क्रूजर ने मद्रास बंदरगाह में प्रवेश किया और शहर पर बमबारी की। अंग्रेजों ने इसे पांडिचेरी में निर्वासित जी रहे क्रांतिकारियों की गतिविधि घोषित किया और फ्रांसीसी गवर्नर से वीवीएस अय्यर और उनके साथियों को अफ्रीका निर्वासित करने का आग्रह किया। फ्रांसीसी पुलिस ने क्रांतिकारियों पर कई आरोप लगाए, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हो सके। इसी दौरान वीवीएस अय्यर ने तिरुक्कुरल का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। तिरुवल्लुवर द्वारा रचित ये अत्यंत प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है, जो जीवन के हर पहलू का स्पर्श करती है। इस अनुवाद से उन्हें व्यापक ख्याति प्राप्त हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वीवीएस अय्यर मद्रास लौट आए और यहाँ पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक के रूप में काम किया। उन्हें सन 1921 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। वो 9 महीने जेल में रहे। जेल में रहते हुए ही उन्होंने अ स्टडी ऑफ कंब रामायण नामक पुस्तक लिखी। एक लेखक के रूप में उन्हें तमिल लघु कथा का जनक माना जाता है। इस तरह वो एक क्रांतिकारी ही नहीं, एक महान साहित्यकार भी थे। पांडिचेरी में रहते हुए उन्होंने अपनी लेखनी से तमिल साहित्य को समृद्ध किया। उनकी लघु कथाएं सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं को उजागर करती हैं। सच तो ये है कि उनके द्वारा किए गए कंबन के रामावतारम और तिरुक्कुरल के अंग्रेजी अनुवाद ने तमिल साहित्य को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाई। 3 जून सन 1925 को अपनी डूबती हुई बेटी सुभद्रा को बचाने की कोशिश में वीवी सुब्रमण्यम अय्यर पापनासम जलप्रपात में डूब गए। इस तरह उनका दुखद असमय निधन हो गया। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की, क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम बाल सभा।
3: लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बच्चों, मैं हूं ज्योति पांडे, एक कहानीकार, और आज बाल सभा में बात करेंगे हार के महत्व की।
4: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
3: बच्चों, अब आप कहेंगे हार का भी कोई महत्व होता है? हमने जब देखा है, हमने जब सुना है, तो बात जीत की हुई है, सक्सेस की हुई है। फेलियर, असफलता, हार भी कोई बात करने की चीज है। कोई होगा जो कभी हारना चाहे? हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी हार का अनुभव जरूर किया है, हार या असफलता का। मैं अपनी बात बताऊं तो कितनी ही बार मैं क्लास में, टेस्ट में, एग्जाम में फेल हुई, वह हार थी। कई कंपटीशन में भाग लिया, वहां भी सेलेक्ट नहीं हुई। दूसरे साथी जीत गए या सफल हुए, तो भी मैं हार गई। जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने हार का सामना नहीं किया हो। हम जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई लेखक हो, तो हमें केवल और केवल उनका सक्सेस या सफलता दिखती है। हमने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कि इस सफलता के पीछे बहुत छोटी छोटी हार या असफलता छुपी हुई है। जब कोई बच्चा चलना शुरू करता है, छोटे छोटे कदम लेता है, तो गिरता है। हर कोई हो, आप हो, मैं हूं, या दुनिया का कोई भी व्यक्ति, तो क्या उसे हार मान लेंगे? तो क्या चलना छोड़ देंगे? कभी नहीं। कहते हैं जिंदगी में सक्सेस का मजा लेने के लिए हार बहुत जरूरी होती है। हार आपको बहुत सारी चीजें सिखा देती है। थॉमस एल्वा एडिसन, जब उन्होंने बल्ब बनाया, तो उससे पहले पता नहीं कितनी बार असफल हुए, और किसी ने उनसे पूछा कि आपने हिम्मत नहीं हारी जब आप असफल हुए? उन्होंने हंसकर कहा, मैंने केवल सक्सेस ही देखा है, मैंने सीखा कि क्या क्या चीजें हैं जो बल्ब बनाने में काम नहीं करती। तो माने तो हार का जीवन में महत्व है। अब दुनिया में हर कोई इस चीज को नहीं समझता, इसलिए हम सब कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं, कहीं हार न जाएं, कहीं असफल ना हो जाएं। अगर हम ये नहीं कर पाए तो क्या होगा हमारे साथ? आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनी है ना? सारे लोग केवल कछुए के जीतने की बात करते हैं। हर कहानी जो हमने पहले सुनी होगी, चाहे वो लोमड़ी की हो जो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती है, कि वो कोशिश करती रही और फिर यह कहकर चली गई कि अंगूर खट्टे थे। मैं इस कहानी में ये देखती हूँ कि लोमड़ी ने कोशिश तो की, और देखा जाए तो हार जैसी शायद ही कोई चीज दुनिया में होती हो। हार का हम मतलब क्या लेते हैं? हार का मतलब लेते हैं कि हम उस चीज को जो चाहते थे वो हमें नहीं मिली, तो हम सोचते हैं हमारी हार हो गई। हमें जितने मार्क्स चाहिए थे एग्जाम में, वो मार्क्स नहीं आए। हम किसी कंपटीशन में सक्सेसफुल होना चाहते थे, वो हम नहीं कर पाए, तो हम समझते हैं हमारी हार हो गई है। लेकिन हार होती नहीं है। जब भी आप कोई काम करते हो उससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते हो, और शायद हार से ये सीखते हो कि हमें और क्या करने की जरूरत है। अच्छा, आप एक कहानी सुनोगे? कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है ना? ये कहानी मेरी बहुत बहुत फेवरेट है। एक बार क्या हुआ कि एक फादर अपने बच्चे का रिपोर्ट कार्ड लेने, उसका नाम केशव था, क्लास में टीचर के पास गए। अब केशव पढ़ने लिखने में शायद उसका ज़्यादा ध्यान रहता नहीं था, क्लास में मस्ती, इधर उधर घूमना, और हर बार केशव की माँ उसे समझा के कहती, बेटा पढ़ लिया कर, जिंदगी में करेगा क्या आगे, सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे। वो हंसता, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती तो हम में से जैसे कई लोग होते हैं, मन नहीं लगता था, कभी टीवी देखने लगता, कभी कुछ खाने लगता। अब टाइम आ गया था एग्जाम के रिजल्ट का, और जैसा आप सबको पता है कि जब इम्तहान का रिजल्ट आता है तो माँ बाप को बुलाया जाता है। उस दिन सुबह सुबह पिताजी तैयार हो गए, केशव का हाथ थामे कि चलो रिजल्ट लेके आते हैं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन केशव को कोई टेंशन नहीं था, वो टेंशन लेने वाले लोगों में से था ही नहीं। क्लास में जब पहुंचे तो काफी भीड़ थी, सारे बच्चे अपना अपना रिपोर्ट कार्ड टीचर से ले रहे थे, सारे पेरेंट्स उनको गले लगा रहे थे, कितना अच्छा किया है, कितने अच्छे नंबर आए हैं, अरे वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अब जब केशव की बारी आई तो टीचर ने केशव के पिताजी को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर ने केशव को ऊपर से नीचे तक देखा, टीचर का ही दिल धड़क रहा था कि ये रिपोर्ट कार्ड कैसे उनके पिताजी को दे। नंबर बताऊं, मैथ्स में 100 में से 20 नंबर, इंग्लिश में 100 में से 24 नंबर, हिंदी में 30 नंबर मिले थे, साइंस में 100 में से 14 नंबर मिले थे, ड्राइंग में ग्रेड अच्छा आया था। उसने धीरे से रिपोर्ट कार्ड केशव के पिता के आगे कर दिया। केशव के पिता ने रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा, रिपोर्ट कार्ड देखा और केशव को देखा। ये नंबर लेकर वो घर जाएंगे तो केशव की मम्मी का क्या हाल होगा, उन्होंने कितनी मेहनत की थी केशव को पढ़ाने में। केशव ने पिताजी की ओर देखा और पहली बार उसे लगा कि नहीं भाई, ये तो अच्छा काम नहीं हुआ है। उसने पिता की आंखों में दुख देखा। जब वह रिपोर्ट कार्ड लेकर बाहर निकले तो एक छोटी सी लड़की दौड़ती हुई आई, केशव भैया, केशव भैया, ये लो अपनी पेंसिल, और उसने पेंसिल केशव के हाथ में रख दी। अंकल, जब मेरे पास पेंसिल नहीं होती है ना, तो केशव भैया अपनी पेंसिल मुझे दे देते हैं। अच्छा, इसीलिए केशव रोज घर से पेंसिल लेकर जाता है, वो पेंसिल देकर दूसरों की मदद करता है। पिताजी थोड़ा आगे चले, एक आदमी दिखा, अरे केशव बेटा, तुम जो रोज कुत्ते को रोटी खिलाते हो, देखो कितना बेहतर हो गया ये कुत्ता, पहले कितना दुबला पतला था। केशव के पिता को बात समझ में आई कि इसलिए केशव अपनी माँ से ज्यादा रोटियां बनवा कर ले जाता है, क्योंकि वो रोटियां कुत्ते को खिलाता है। थोड़ा और आगे चले तो एक पड़ोस वाले अंकल जो उनके पड़ोस में रहते हैं, उन्होंने कहा, बेटा तू रोज दवाई लाता है मेरी और रोज पूरे के पूरे पैसे गिन कर वापस करता है, जीता रह बेटा, जीता रह। पिता को समझ में आया कि इसलिए केशव को स्कूल से आने में थोड़ी देर होती है। केशव के पिता घर पहुंचे, माँ ने पूछा, कैसा रहा रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड देखा? तो सब्जेक्ट्स में तो नंबर कम थे, पर जिंदगी में जो चीज़ें ज़रूरी हैं, लोगों पे दया, लोगों की सहायता करना और जानवरों की रक्षा करना, उनको खाना देना, उसमें केशव के नंबर बहुत बहुत बहुत ज़्यादा थे। तो हारने का मतलब ये नहीं होता कि केवल आप किसी एक चीज़ में हार गए हैं। जीवन के बहुत से पहलू होते हैं। हो सकता है आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, पर आप गाना अच्छा गा लेते हो। हो सकता है आपके मैथ्स में मार्क्स कम आते हों, पर आप दूसरों की सहायता करते हो। तो जब भी कभी आप हारें, जब भी कभी आपको ये लगे कि जिंदगी आपका इम्तिहान ले रही है और आपको हार महसूस हो रही है, आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे कर पा रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए कि आप वो क्या कर पा रहे हैं जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं। हार हमेशा अकेली नहीं होती। जब भी कभी आप हारें तो एक चीज ध्यान रखिए कि हार कभी फाइनल नहीं होती है। हार केवल सफल मार्ग तक पहुंचने का केवल एक रास्ता होती है। और कहते भी है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं किसी भी चीज के लिए, तब तक आप हार ही नहीं सकते। आपने हैरी पॉटर किताब का नाम सुना होगा, दुनिया की बहुत चर्चित किताबों में से एक है। इस हैरी पॉटर की जो राइटर हैं जेके राउलिंग, उनको कितनी बार वो अपनी किताब लेके गई लोगों के पास छापने के लिए, और सबने मना कर दिया। तो क्या वो हार मानकर बैठ गई? उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। वह कोशिश करती रही, कोशिश करती रही, और फिर एक दिन हैरी पॉटर दुनिया की सबसे चर्चित किताब बन गई। अमिताभ बच्चन की पिक्चर तो आप सबने देखी होगी, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अमिताभ बच्चन जी का जीवन अगर आप कभी पढ़ें, तो फिल्मी दुनिया में उनका जो जीवन था वो बहुत संघर्षों से भरा पड़ा था। उनको पिक्चरें नहीं मिलती थीं, लोग कहते थे ये इतने लंबे हैं, उनको कास्ट नहीं करते थे लोग। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने उनकी प्रतिभा देख ली। तो क्या उन्होंने काम करना छोड़ दिया? जब लोगों ने उन्हें रिजेक्ट किया तो उन्होंने कोशिश करनी छोड़ दी? हार तब होती है कि जब आप किसी चीज को पाने के लिए कोशिश करना छोड़ दें। वह आपने कविता सुनी या पढ़ी होगी ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चींटी दाना लेकर चढ़ती है, 100 बार गिरती है और फिर चढ़ती है, लेकिन वो दाना ले जाना नहीं छोड़ देती। तो करना क्या है? हमको केवल कोशिश करते रहना है। हर बार देखना है कि पिछली बार हमने क्या ऐसी भूल की थी, कौन सी ऐसी छोटी सी चीज की थी कि जो हम सफल नहीं हो पाए, और फिर उस चीज पे ध्यान देनी है। मान लीजिए आप कभी स्टेज पर गए, माइक पकड़ा और जो आप तैयार कर कर आए थे आप बोलना भूल गए, आप घबरा गए, आप उतर कर आए और आपको लगा कि मैं तो हार गया हूं, मैं बोल ही नहीं पाया, मैं असफल रहा। लेकिन अगर आप इस चीज के बारे में गंभीरता से सोचें, तो शायद अगली बार आप वो चीजें करके जाएंगे जो आपको बोलने में फायदा दे। तो शायद अगली बार आप वो सब चीजें तैयार करके जाएंगे जो आप पहली बार नहीं कर पाए। जैसे छोटी सी चीज है कि स्टेज में जाने से पहले 2-3 बार डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस लेना, जिससे आप नर्वस ना हो, या फिर 2-3 बार जिन जगह आप अटके हो उन चीजों को और ध्यान से पढ़ना। कुछ भी कर सकते हैं आप। अगर आप मैथ के एग्जाम में, मान लीजिए मैं इसलिए बार बार मैथ कह रही हूँ क्योंकि मैथ में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मान लीजिए आपको मैथ का कोई सवाल नहीं आता है और आपके कई स्टेप्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस स्टेप में मेरी गलती हुई है, दोबारा उसको जा सकते हैं या कोई और दूसरा तरीका अपना सकते हैं याद करने का, समझने का, तो बहुत सारे रास्ते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, जो कुछ लोग होते हैं जो दुनिया जिनको देखती है कि ये कभी कोई गलती ही नहीं करते, ये तो हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो आपको देख के लगता होगा कि शायद इनमें दिमाग ज़्यादा है या इनमें काबिलियत ज़्यादा है। हो सकता है कि उनमें दिमाग ज़्यादा हो सकता है कि उनमें काबिलियत ज़्यादा हो सकता है कि वो चीज़ें दो बार में कर पाएं जो कोई दूसरा चार बार में करे, पर ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं कि आप कोशिश करते रहें और कर ना पाए। एक छोटी सी कहानी और बताती हूँ, उस लड़की की कहानी जो कभी कोई गलती करती ही नहीं थी। सारे लोग स्कूल में, उसका नाम वृंदा था, उस नाम से नहीं जानते थे, वह जानते थे ऐसी लड़की जो कभी गलती नहीं करती। परफेक्ट काम होता था उसका, सुबह उठती थी, अपनी यूनिफॉर्म पहनती थी, दोनों मोजे पहनती थी, पानी की बॉटल लेती थी, अपना टिफिन अच्छे से बैग में रखती थी, उसने क्लास में होमवर्क किया होता था, वो क्लास में सब चीज ध्यान लगा के सुनती थी, टीचर को गुड मॉर्निंग करती थी, जब शांत होने को बैठा जाए, बोला जाए, तो शांत होके बैठती थी क्लास में। माने कोई गलती नहीं, परफेक्ट स्टूडेंट। सारे घर में लोग भी उसे कहते थे, वृंदा तो कोई गलती कर ही नहीं सकती। वृंदा कोई गलती नहीं करती थी, लेकिन वो हमेशा टेंशन में रहती थी, स्ट्रेस में रहती थी कि सारा काम मुझे ठीक ठाक तरीके से ही करना है। कभी हंसती नहीं थी, उसका सारा दिमाग लगा रहता था कि अब इस काम को परफेक्ट ढंग से, बिल्कुल ठीक से कैसे किया जाए। वहीं पर उसका छोटा भाई बंटू से कोई काम ठीक से नहीं होता था, पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर जाता था, रिमोट बिस्तर के नीचे रह जाता था, जब स्कूल पहुंचता तो देखता मोजे दूसरे अलग अलग पहने हुए हैं, होमवर्क अगर हिंदी का कर लिया तो इंग्लिश का भूल जाता था, क्लास में हंसता ही रहता था। और वृंदा बिल्कुल चुपचाप। एनुअल फंक्शन वाले दिन वृंदा बहुत नर्वस थी, उसको एक सोलो सॉन्ग यानी एकल गीत गाना था। सबको पता था वृंदा ने बहुत मेहनत की होगी, वो गलती तो कर ही नहीं सकती। बंटू उसको पेड़ बनाया गया था, क्योंकि लोगों को लगता था पेड़ थोड़ा बहुत हिल भी गया तो चल जाएगा। ऑडिटोरियम भरा हुआ था, सारे स्कूल के पेरेंट्स बैठे हुए थे और वृंदा हाथ में माइक लेके स्टेज के बीचों बीच आकर खड़ी हुई। उसने जैसे ही गाना शुरू किया, कहीं से एक चूहा आके तार के पीछे और भड़ाम, वृंदा स्टेज में गिर गई। वृंदा ने कभी नहीं सोचा था कि कोई काम उससे गलत होगा या कोई काम वो कर नहीं पाएगी। वो थोड़ी देर तक खड़ी हुई, तभी बंटू जो पेड़ बना हुआ था चलता चलता आया और बोला, वृंदा दीदी उठो, और सारा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज गया। वृंदा भी हंसने लगी, वह पहली बार हंसी थी। अब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में किसी भी छोटी चीज को इतनी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वह पहली बार हंसी थी और वो भी अपनी हार पर। तो एक चीज बताऊं, जिस दिन आप अपनी हार पर हंसना शुरू कर देंगे, जीवन की परेशानियां वैसे ही कम हो जाएंगी। और एक और तरीका बताऊं आपको, जब भी कभी आप किसी चीज में असफल हों, तो अपने आप से वैसे ही बातें करें जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेस्ट फ्रेंड रेस में हार गया, तो आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, अगली बार और कोशिश कर लेना। अरे तू दौड़ा तो अच्छा था ना। तो यही चीज आप अपने आप से भी कह सकते हैं कि मैंने तो कोशिश की थी। हो सकता है कोई कमी रह गई हो सकता है एक दो बार करने के बाद मुझे ये चीज आ जाए। तो जिंदगी में हार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि जब हम हारते हैं तो हम कई चीजें सीखते हैं। तो बच्चों, जब हम हार पे इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो जरा आंखें बंद करिए और उन अनुभवों को याद करिए कि जब आप कभी हारे हो। आंखें बंद करिए, हो सकता है कोई क्रिकेट मैच हो सकता है स्टेज पे कुछ बोलने में, या कि कभी क्लास में असफल हुए हो, या खाना बनाना सीखा हो, घर में कोई नई डिश बनानी सीखी हो और आप उसमें असफल हो गए हो, या म्यूजिक क्लास में या किसी कोचिंग में। सारी चीजों को याद करिए। बड़ा खराब लगता है ना जब हारते हैं, तो हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि हम सबसे कमतर हैं, हमें कोई चीज आती नहीं है। हम अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। हमारे दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं, मैं किसी लायक ही नहीं हूं। हमको अपनी ये सेल्फ टॉक बदलनी है। जब भी आप कभी हारें तो 3-4 चीजों पर ध्यान दीजिए। मैंने क्या कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं कर सकता था, या जिस पर मैं ध्यान देता तो शायद बेहतर कर लेता? आगे मुझे ऐसी कौन सी स्किल या खूबियां डेवलप करनी है अपने आप में कि मैं जब वो काम करूं तो उसे अच्छे से कर पाऊं? और सबसे बड़ी बात कि मैंने इस असफलता से क्या सीखा? आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। मान लीजिए कि आप एक मैच हार गए तो आप की क्या क्या सीखे रही होंगी। हो सकता है आपने सीखा हो कि टीम वर्क जरूरी है, हो सकता है आपने सीखा हो कि शांत रहकर खेलना जरूरी हो, या कि धैर्य रखना जरूरी है। कुछ भी चीजें हो सकती हैं। आप ध्यान देंगे तो आप उन सब चीजों को ढूंढ पाएंगे जो आपको और बेहतर प्रदर्शन करने में सहायक हो जाएं। मान लीजिए आपने मंच पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तो सोचिए क्या क्या चीजें हो सकती थी जो आपकी इस सफलता में बाधक हुई। हो सकता है आप नर्वस हो रहे हो, तो जैसा मैंने पहले बताया, गहरी सांसें लेकर स्टेज पर जाएं। हो सकता है अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर 10 बार नहीं 20 बार प्रैक्टिस करते तो आप स्टेज पर और बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। सीखे आपकी हो सकती हैं, लेकिन सीखे होती जरूर है। हर हार में, हर असफलता में कुछ न कुछ सीख हमें जरूर मिलती है, जो हमें जिंदगी में हमेशा काम आती है। वो कहते हैं ना, जीत खुश करती है पर हार समझदार बनाती है। तो समझदार तो सबको बनना है ना, तो हार में कभी भी दुखी नहीं होना है। हाँ, जरूर हमें थोड़ी देर के लिए परेशानी होती है, मन में कई तरह के ख्याल आते हैं, लेकिन हमें उन ख्यालों को सही दिशा देनी है, सही डायरेक्शन देना है और हमेशा निरंतर चलते रहना है, जब तक कि हम वो चीज़ थोड़े और बेहतर ढंग से ना कर पाए। वो कछुए की बात याद है ना आपको? कछुआ तो बेचारा इतना धीमे धीमे चलता था, पर उसने खरगोश से बाजी मार ही ली, क्योंकि वो निरंतर चलता रहा। बस हमें यही करना है, जिंदगी आसान हो जाएगी। हार के सामने हार नहीं माननी है, बस यही कहना चाहूंगी आपसे आज। तो प्यारे दोस्तों, आशा करती हूं कि आज आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप समझ पाए होंगे कि जीवन में हार का कितना महत्व है और हारना क्यों जरूरी है। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, कुछ नया सीखने। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौर, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
4: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। सुनते रहिए।
5: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व।
2: नब्बे दशमलव आठ मेगा हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। और जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में भारतीय सेना के इतिहास को जानने का हमारा प्रयास चल रहा है, और इसी सिलसिले में आप सुन रहे हैं सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की चर्चा। और श्रोताओं, जैसा कि आपको याद होगा कि हम पिछले सप्ताह के एपिसोड में जिक्र कर रहे थे कि किस तरह भारतीय थल सेना ने इस युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं पश्चिमी मोर्चे पर जो महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी गई उसकी गौरव गाथा लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा की जुबानी, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। सर, स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है।
3: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। पूर्वा जी, हम पिछले बार जिक्र कर रहे थे
1: जी
3: बैटल ऑफ बसंतर का
1: जी, बिल्कुल,
3: जो कि इस पूरे के पूरे 71 वॉर में की सबसे प्रचंड बैटल थी
1: जी, बिल्कुल।
3: और इसमें आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फियर्स रहा था कि दो दिन के इस बैटल में 15 से 17 दिसंबर तक जो ये लड़ी गई थी, इसमें दो परमवीर चक्र और 5 महावीर चक्र से जो है लोगों को सम्मानित किया गया था, और इसके अलावा बहुत सारे जो है वीर चक्र और अदर अवार्ड्स भी मिले थे। तो हाउ फियर्स दिस बैटल इज, यू कैन वेल इमेजिन अबाउट इट। एंड इस बैटल में सबसे बड़ी बात जो हुई थी, इंडियन आर्मी जो है आउटशाइंड एंड इट इमर्ज विक्टोरियस, ठीक है, बाय डिस्ट्रॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तान टैंक्स एंड इन्फेंट्री रिसोर्सेज। ऑलमोस्ट एक आर्मर्ड ब्रिगेड जो होती है जिसमें 100 से ज्यादा टैंक्स हैं, उसका जो एक मेजर पोर्शन जो है बर्बाद कर दिया था, और ये बहुत बड़ी सफलता मिली थी
1: जी।
3: इसकी मतलब कुछ जो है मुख्य बातें हम आज आप जिक्र करते हैं
1: जी, बिल्कुल सर।
3: जैसे मैं शुरुआत करूंगा कि जब इनिशियल फेज में अटैक के बसंतर रिवर को क्रॉस करना था
1: जी,
3: उसके लिए 16th बटालियन ऑफ मद्रास रेजिमेंट थी, उसको मतलब टास्क दिया गया था कि वो दुश्मन की दो वाइटल लोकेशन थी, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन थी, उन पर कब्जा करें
1: जी।
3: तो अब जो इनिशियल जो बटालियन जाती है, जो सबसे पहले जाती है, आप समझ सकते हैं उस समय दुश्मन भी तैयार रहता है पूरी तरह से,
1: बिल्कुल,
3: आप भी तैयार रहते हो। सो इट इज अ बैटल ऑफ विट्स, इट्स अ बैटल ऑफ गैलेंट, इट्स अ बैटल ऑफ ब्रेवरी, कि दोनों में से कौन जीतेगा,
1: कौन जीतेगा। पहली बाजी जो मार लेता है सर, वो आखिरी तक आगे हावी रहता है,
3: आगे हावी रहता है। और ये अगर उस दो लोकेशन जो भी इनका जो ऑब्जेक्टिव था, दो लोकेशन तीन लोकेशन, वो कैप्चर करने के बाद ही आगे के लिए रास्ता बनेगा
1: जी, बिल्कुल,
3: ठीक है, ब्रिजेट बनेगा आगे के लिए जो है एडवांस होगा
1: जी, बिल्कुल।
3: तो 16 मद्रास को दो लोकेशंस कैप्चर करने को जो टास्क था उस पे उन्होंने अटैक किया, और इट वाज अ वेरी इंटेंस बैटल अगेन, क्योंकि उन्होंने दुश्मन पूरी तरह से तैयार था, उन्होंने बहुत स्ट्रांग माइनफील्ड्स लगा रखी थी, उनके जो है वेपन्स जो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर था, देन आर्टिलरी फायरिंग का सपोर्ट था, आर्टी सपोर्ट था, सब कुछ था
1: जी।
3: और मतलब उनके पास जो है इवन कंपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा वहां पे लोग थे।
1: अच्छा।
3: इस बैटल में जो है एक वक्त ऐसा आ गया था कि हैंड टू हैंड फाइट हो रही थी सोल्जर्स की, एक एक बंकर क्लियर कर रहे थे लोकेशंस पे, करने के बाद जो है 16 मद्रास वाज एबल टू कैप्चर दिस ऑब्जेक्टिव, दो लोकेशन को उन्होंने कैप्चर करा
1: जी।
3: अब पाकिस्तान जो है, जैसे मैंने पहले बोला उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि उसको जो है डिफेंड करना, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये हम हार गए तो इसमें बसंता रिवर क्रॉस करने का इंडिया को जो है
1: मौका
3: मिलेगा और साथ साथ जो उनके आगे के लोकेशंस हैं वो खतरे में आ जाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान ने जो है इस पे काउंटर अटैक करना शुरू किया हरिगेन करने के लिए। अब वो एक के बाद एक जो है अटैक करते गए। आप ये समझिए कि 2 दिन 3 रातें लगातार उन्होंने काउंटर अटैक्स किया। तो कितने बार उन्होंने काउंटर अटैक किया होगा, एक के बाद एक, एंड हर बार जो है जो डिफेंसेस होल्ड कर रहे थे, तंबीज जिसको मद्रास रेजिमेंट में हम जवानों को तंबीज बोलते हैं, तो जो होल्ड कर रहे थे तो दे वेरी ब्रेवली एंड उन्होंने इस लोकेशन को अपने हाथों से जाने नहीं दिया। वो जो है जितने बार अटैक होता रहा उतनी बार उसको जो है रिपल्स करते चले गए। तो उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था कर्नल बीपी गही साहब जो थे, ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द सेंस जो है अटैक में भी उसके बाद भी, एंड इन स्पाइट ऑफ रिसीविंग वेरी सीरियस इंजुरीज ठीक है ड्यूरिंग द बैटल, फिर भी जो है वो लड़ते रहे एंड लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया देश के लिए, शहीद हुए। देखिये ये जो रेजिमेंट है मद्रास रेजिमेंट जो है इसका मोटो है इट्स ग्लोरी टू डाई डूइंग वन्स ड्यूटी,
1: यानी कि स्वधर्म निधन श्रेय।
3: अरे वाह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसको जो है ट्रू सेंस में अपने रेजिमेंट के मोटो के लिए उन्होंने जो है उसको कायम रखते हुए जो है शहीद हुए एंड इसके लिए उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था पोस्टमसली,
1: यानी अपने पहले धर्म के लिए बलिदान हो जाए
3: बलिदान जी। इसी तरह से 16 मद्रास के एक और सोल्जर थे हवलदार थॉमस फिलिपस
1: जी,
3: उन्होंने भी बहुत ही बहादुरी से जो है लड़ते हुए अपनी प्लेटून को, क्योंकि वो प्लेटून कमांडर नहीं थे, प्लेटून कमांडर जो है शहीद हो गए थे, तो उन्होंने टेक ओवर किया था और वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि आखिरी बंकर जो है कैप्चर नहीं किया गया था। ही ऑल्सो रिफ्यूज की भाई चोट लगने के बाद इंजरी होने के बावजूद जो है वो इवैक्यूएट नहीं हुए थे, तो उनको भी जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसी तरह से जो बैटल ऑफ बसंतर है उसमें बहुत सारे करेजियस एक्शंस देखे थे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि इसमें 2 परमवीर चक्र 5 महावीर चक्र और अनगिनत जो है वीर चक्र और अदर अवार्ड्स मिले थे।
1: आप जैसा बोल भी रहे ना कि प्रचंड युद्ध था सर।
3: जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे जो 2 परमवीर चक्र विजेता है उनके बारे में जिक्र करना चाहूंगा।
1: बिल्कुल सर, हम जानना चाहेंगे सर इन परमवीर चक्र विजेताओं के बारे में, और ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं जो आज इस कार्यक्रम को सुन रही है वो इससे प्रेरणा ले पाए।
3: तो हम सबसे पहले जिक्र करेंगे ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब का
1: जी,
3: जो उस समय मेजर थे और 3 कैनेडियंस में 40 कंपनी कमांड कर रहे थे। इस बटालियन को भी जो है 16 मद्रास की तरह जो टास्क मिला था
1: जी
3: आगे बढ़ के ब्रिज हेड एस्टैब्लिश करने का, मतलब इन द सेंस रास्ता
1: बसंतर
3: रिवर पे जी, जैसे यहाँ जो है 16 मद्रास लड़ रही थी उसी तरह से 3 ग्रेनेडियर्स भी लड़ रही थी
1: जी।
3: जो है 3 ग्रेनेडियर्स का टास्क था, मतलब एक लोकेशन थी जरपाल, उसके ऊपर कब्जा करना। अगेन जैसे कि हम यहाँ पे 16 मद्रास में हमने देखा था कि दुश्मन ने काफी अच्छे से तैयारी करके रखी हुई थी एंड इसी तरह से ये लोकेशन भी बहुत ही स्ट्रांगली हेल्ड थी। तो जैसे ही कंपनी मतलब आगे बढ़ी है तो उनके ऊपर काफी हैवी फायरिंग आई, शेलिंग आई, ठीक है, काफी उनको जो है कैजुअल्टीज हुई। लेकिन अगेन ग्रेनेडियर्स जो थे जो है सोल्जर्स थे वो जो है कॉन्स्टेंटली लड़ते रहे एंड ये उनकी हिम्मत बहादुरी और जज्बा जो है उसके चलते हुए जो है उन्होंने वो ऑब्जेक्टिव अपना कैप्चर किया। जो है यहाँ पर भी सेम तरह के हालात थे कि एक एक बंकर को क्लियर करने के लिए हैंड टू हैंड फाइट हुई, एक एक बंकर क्लियर करने के लिए जो है लड़ाई लड़नी पड़ी थी।
1: तो आमने सामने आ गए,
3: आमने सामने आ रहे हैं बंकर, मतलब सुनने में शायद आपको अगेन आसान लगे लेकिन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। एक एक बंकर को क्लियर करने में काफी टाइम लगता है, वहां से फायरिंग आ रही है आपके ऊपर, दुश्मन को भी मालूम है कि अभी मेरे ऊपर 4 लोग आएंगे तो जो है मैं खत्म हो जाऊंगा, उसको भी वो अपनी
1: पूरी तैयारी
3: सब चीजों के लिए लड़ रहा है, अपने देश के लिए लड़ रहा है, अपने यूनिट के लिए लड़ रहा है, अपने आप के लिए लड़ रहा है। सबके लिए वो लड़ रहा है, तो ही इज ऑल्सो इक्वली मतलब रेजिस्टेंट, तो उसको काबू करना, उसको ऊपर कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है। अगेन जैसे ही ये लोकेशन पे कैप्चर हुआ तो दुश्मन ने जो है काउंटर अटैक लॉन्च करना शुरू किया, और इस बार उन्होंने जो काउंटर अटैक को लॉन्च कर रहे थे उसमें आर्मर्ड भी थी, आर्टिलरी का सपोर्ट भी था। अब ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब जो थे, ही वॉज कमांडिंग दैट कंपनी। ये जो कंपनी कमांडर साहब होते हैं उनका रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है, उनके जज्बे पे, उनकी लीडरशिप के ऊपर जो है पूरी कंपनी निर्भर होती है। और होशियार सिंह साहब जो थे वो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन जो है अपने जवानों का हौसला अफजाई करते रहे, बढ़ते रहे, उनको जो है उन्होंने हर काउंटर अटैक पे उनका हौसला अफजाई करते रहे और खुद भी लड़ते रहे। ऐसे करते करते मतलब इवन उनको जो आर्टिलरी शेलिंग में उनको खुद को जो है कैजुअलिटी हुई थी जो है, लेकिन फिर भी जो है वो पीछे नहीं हटे और दुश्मन को जो है उन्होंने आधी कैजुअलिटी पहुंचाई थी। फिर से दोबारा जो है उनके ऊपर काउंटर अटैक आया, ठीक है। तो इस दौरान जो है लड़ाई जब चल रही थी तो जो MMG गन थी उसका क्रू को गोली लग गई थी, वो शहीद हो गए थे। तो होशियार सिंह साहब खुद जो है उन्होंने MMG को ऑपरेट किया और वो लगातार दुश्मन के ऊपर फायर करते रहे। यू सी हाउ फियर्स इट कैन बी कि ये जो अटैक था फाइनल अटैक था एक तरह से 17 तारीख को जो हुआ था, और उसमें दुश्मन की पूरी बटालियन थी जो है उसमें उनके 80 जवान मतलब मरे थे, इंक्लूडिंग उनके बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर साहब। उनको छोड़ के जो बाकी लोग डिमोरलाइज होकर चले गए थे,
1: भाग गए थे
3: इन द सेंस क्योंकि इतना मतलब
1: जो है, नहीं कर पा रहे
3: हाँ, इतना जो है इन्होंने स्ट्रांगली लड़ाई लड़ी थी। एंड उसका सबसे बड़ा कारण था कि होशियार सिंह साहब जो थे वो खुद वहां खड़े थे, एक एक जवान के साथ खड़े हुए थे, प्रेरित कर रहे थे। एंड नो डाउट दिस इज अ डिस्प्ले ऑफ एग्जेम्पलरी करेज एंड ब्रेवरी एंड आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, जिसके लिए उनको जो है परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। एंड वेरी राइटली सर वाज अवार्डेड परमवीर चक्र, एंड उसी के कारण जो है युद्ध का जो है मतलब स्वरूप बदल गया।
1: दुगने उत्साह से लड़ाई होने लगती है ना सर,
3: दुगने उत्साह से लड़ाई हो रही है। आप दुश्मन का जो है ने जो है टैंक्स के ऊपर और जो उनके रिसोर्सेस हैं उसको नुकसान पहुंचाया, समाप्त कर दिया है, एंड जो आगे बढ़ने का रास्ता है
1: वो क्लियर हो गया।
3: ठीक है जी। ऐसे ही एक और बहादुर ऑफिसर थे जिनको हम सब जानते हैं, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल साहब
1: जी।
3: एंड वो 17 पूना हॉर्स के थे
1: जी।
3: आपको अगर याद हो 17 पूना हॉर्स के पहले भी एक परमवीर चक्र जी सर है ना, तो वो पहले परमवीर चक्र विजेता थे और 17 पूना हॉर्स के दूसरे परमवीर चक्र विजेता सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल
1: सर। सर जहाँ तक मेरी जानकारी है ये सबसे कम उम्र वाले ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें परमवीर चक्र
3: जी। बिल्कुल सही बोला आपने, मात्र 21 साल की उम्र थी उनकी जब
1: उन्हीं के ऊपर 21 वर्ष से ही मूवी भी बनी है सर।
3: 21 में बिल्कुल सही कहा आपने। एंड इनका जो कमीशन हुआ था पूना हाउस में 13 जून को हुआ था 71 को, तो मतलब से 6 महीने पहले लड़ाई से 6 महीने पहले जो है इन्होंने यूनिट ज्वाइन करी थी। इट्स अगेन यूनिक फीचर फॉर ए यूनिट, आप देखिए पूना हाउस के लिए जिसमें कि दो दो परमवीर चक्र हैं। ऐसी एक और यूनिट भी है बाय द वे, अगर को याद हो लांस नायक करम सिंह जी और सुविधा जोगिंदर सिंह जी, दोनों जो है परमवीर चक्र विजेता फर्स्ट सिख के थे
1: जी। अपन ने कार्यक्रम में इस दौरान उनका भी
3: उनका जिक्र किया है हमने है ना, कार्यक्रम में उनका जिक्र किया है। तो 71 पूना हॉर्स जो थी ऑफेंसिव ऑपरेशन जब लॉन्च हुआ था शुक्रगढ़ बल्ज में, तो इनको भी टास्क मिला था ब्रिजहेड एस्टेब्लिशमेंट करना है, यानी रास्ता जो बनाना है उसमें जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है उसके साथ ये लोग थे। तो 15 दिसंबर को इन्फेंट्री ने जो है सक्सेसफुली ये लोकेशंस कैप्चर कर ली थी क्रॉस जो है बसंतर,
1: तो रास्ता क्लियर हो गया था,
3: है ना। अब वो जैसे हमने इससे थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि उस पर काउंटर अटैक आया था दुश्मन का, जिसमें कि आर्मर्ड रेजिमेंट के टैंक्स भी थे, ठीक है। तो जो स्क्वाड्रन थी इन्फेंट्री के साथ जो है उसके अगेंस्ट काफी ज्यादा टैंक्स आ गए थे क्योंकि दुश्मन की रेजिमेंट थी, तो उन्होंने जो है री इन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया। तो जब री इन्फोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट किया तो जो अरुण खेत्रपाल साहब थे वो वहाँ पास में ही लोकेटेड थे, तो उन्होंने क्या किया अपने ट्रुप में मतलब जो टैंक्स होते हैं उसके साथ इमिडिएटली जो है उन्होंने रश किया कि वो स्क्वाड्रन को सपोर्ट कर सके। अब वो जब जा रहे थे तो रास्ते में जो है उनके ऊपर भी काफी हैवी फायरिंग आई दुश्मन की लोकेशन से। और RCL गन्स होती हैं जो रिकॉयललेस गन होती है जो टैंक्स के लिए घातक होती है, तो माइनफील्ड में लगी हुई थी उससे भी उनके ऊपर फायर आया। तो ये उनके साथ जो है लड़ते हुए इन्होंने उन सबको जो है खत्म किया, नेस्तनाबूद किया जो है। और इनफैक्ट इस दौरान उन्होंने काफी सारे दुश्मन के जो है जवानों को POW प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनाया, पकड़ा भी है। और ये सब जब ओपोजिशन खत्म करके जो स्क्वाड्रन थी उसके मतलब जो है वहां तक पहुंचे सपोर्ट करने के लिए जिसको जा रहे थे, तब तक जो है दुश्मन का काउंटर अटैक फिजल आउट हो गया था। वो काउंटर अटैक जो है सफल नहीं हुआ था और वो लोग वापस जा रहे थे। तो उनके पीछे पीछे जो है जाके
1: उनका पीछा किया,
3: हाँ, पीछा किया और उनके एक टैंक को बर्बाद किया। तो मतलब जो कमांडर साहब थे उनको मतलब जो स्क्वाड्रन कमांडर थे उनको काफी परसुएड करना पड़ा कि भाई मत करो, आप इनके पीछे मत जाओ, अभी बहुत कुछ है, करना है। सी इट्स अ जोश
1: जी, बिल्कुल
3: यंग जोश जो होता है वो वाली बात थी। तो थोड़ी देर बाद क्या है, दुश्मन ने फिर से दोबारा काउंटर अटैक लॉन्च किया। अच्छा, इस बार उन्होंने अटैक लॉन्च किया था जहाँ पे अरुण खेत्रपाल साहब थे, डिप्लॉयड थे, तो उस लोकेशन से उन्होंने मतलब जो काउंटर अटैक लॉन्च किया। अब इसमें जो है इट वाज अ वेरी फियर्स बैटल, टैंक टू टैंक बैटल शुरू हो गई जिसमें कि दुश्मन के 10 टैंक डिस्ट्रॉय हुए और कहते हैं कि उसमें से 4 तो अरुण खेत्रपाल साहब की जो ट्रुप थी उन्होंने डिस्ट्रॉय किए, खुद किए जो है। तो ये जब हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, ये 3 टैंक्स में थे, 2 टैंक्स जो थे खेत्रपाल साहब के जो ट्रुप थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। अभी जो है इनका जो टैंक था वो ही बचा था ठीक है। अब वो भी जो है ये लड़ते रहे। इस बीच में इनके टैंक को भी जो है दुश्मन का गोला लगा,
1: अच्छा,
3: जो है फायरिंग में, और उसमें से ये आग में घिर गया पूरी तरह।
1: अच्छा जी,
3: अब देखिये टैंक जल रहा है तो सुनिश्चित है कि आदमी बचेगा नहीं। तो उनको हुक्म भी था कि भाई आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बावजूद उन्होंने देखा कि टैंक की जो गन है वो काम कर रही है, तो ही डिसाइडेड कि ही विल नॉट लीव द टैंक एंड ही केप्ट ऑन फायरिंग ऑन द एनिमी। और ऐसे करते करते उन्होंने जो दुश्मन के जो बाकी टैंक्स थे वो भी डिस्ट्रॉय किया। यहाँ तक कि जो लास्ट टैंक था जिसको डिस्ट्रॉय किया वो कहते हैं उनके लोकेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर पे था। जब उन्होंने कम्युनिकेट कर रहे थे अपने कमांडर को, जब उनको बोला गया कि आप अपना टैंक छोड़ दीजिए, कि ये एग्जैक्टली वर्ड जो बोलते हैं, कहते हैं कि नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल फायरिंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स।
1: क्या बात है,
3: ये एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, बहुत बहुत बड़ा जज्बा है। तो उसके बाद जो इनका टैंक को सेकेंड हिट लगा एंड दिस ब्रेव सोल्जर जो थे शहीद हो गए। लेकिन
1: यानी वो टैंक उन्होंने
3: छोड़ा नहीं,
1: अंतिम सांस तक
3: नहीं छोड़ा। एंड इसके कारण के जो एफर्ट्स थे तो उससे दुश्मन का जो काउंटर अटैक था वो तो फिजल आउट हो गया। जो उनको दुश्मन का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो नहीं,
1: नष्ट हो गया।
3: एंड अरुण खेत्रपाल साहब जो थे, इन ट्रू ट्रेडिशन ऑफ ए ब्रेव सोल्जर, ही लेट डाउन हिज लाइफ and he was awarded Paramvir Chakra posthumously for his brave action.
1: अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा है सर।
3: बिल्कुल, आपने सही बोला।
1: जी।
3: इतिहास में आपको ऐसे जो है actions बहुत ही कम देखने को मिलते हैं।
1: सर यहाँ एक सामान्य नागरिक का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि सर टैंक के अंदर कितने व्यक्ति होते हैं?
3: टैंक में 3 लोग होते हैं जनरली, जैसे एक ड्राइवर होता है, एक लोडर होता है, एक कमांडर होता है।
1: अच्छा,
3: लेकिन तीनों का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: उनका भी कोऑर्डिनेशन है ना, तभी
3: कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जो गनर होता है,
1: हाँ।
3: जो लोड करते हैं, लोडर नहीं, उसको गनर बोलते हैं, ड्राइवर, गनर एंड जो है कमांडर।
1: तो सर वो जो गोले होते हैं वो टैंक के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि हम उसको लंबी लड़ाई लड़ सके
3: या होता है, उसमें काफी राउंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके के राउंड्स होते हैं। दुश्मन के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग होते हैं, टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग होते हैं।
1: यानी ये इतना त्वरित निर्णय होता होगा किस तरह का गोला हमें अब डालना है।
3: बिल्कुल, वो तो है ही है। उसके अलावा उसकी जो मोबिलिटी होती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
3: आपको एक मजेदार बात बता दूं, जब चार टैंक एक साथ जब चल रहे होते हैं, पांच टैंक चल रहे होते हैं, धूल उड़ रही होती है, उसके बीच में जो वो आवाज होती है ना, उससे आपको कभी समझ में नहीं आएगा टैंक आ कहां से रहे हैं। एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपको लगेगा टैंक आपके दाएं से आ रहा है, बाएं से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। आवाज इस तरह से आती है जो है, हम जब ट्रेनिंग के दौरान हमने देखा है, ये
1: जब तक आप इन सब चीजों की ट्रेनिंग नहीं लेंगे आप इन्हें ऑपरेट भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते।
3: बिल्कुल। जब भी मैं अरुण खेत्रपाल साहब के बारे में, सर के बारे में सोचता हूँ, मतलब ही इज रियली पर्सन हु मोटिवेट्स अस।
1: जी बिल्कुल सर,
3: विदाउट एनी डाउट।
1: बिल्कुल सर,
3: एंड वी सैल्यूट हिम फॉर हिज ब्रेवरी एंड हिज गैलेंट एक्शन।
1: जी बिल्कुल सर।
3: तो ये था बैटल ऑफ बसंतर, जो कि शकरगढ़ बल्ज की, जैसे कि बोला कि सबसे जो है प्रचंड बैटल रही थी। उसके बाद जो है 17 दिसंबर को सीज फायर डिक्लेयर हो गया था
1: जी,
3: तो ऑपरेशंस जो है वहीं पे खत्म हो गए थे। कहते हैं कि अगर थोड़ा वक्त और रहता
1: जी,
3: तो शायद हम काफी इसमें एडवांस कर सकते थे, और ये जो बल्ज है
1: जी,
3: ये हो सकता है हम इस पे
1: हमारे कब्जे में होता,
3: हमारे कब्जे में होता जो है। एनीवे वी कैन नॉट डिक्टेट द टर्म्स। तो इसी तरह से जो है नीचे अगर हम आते हैं पंजाब में, खेमकरण सेक्टर में जो है फिरोजपुर, अमृतसर, अमृतसर के नीचे फिर फिरोजपुर, उसके नीचे खेमकरण सेक्टर आता है, वहाँ पे 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन किया था। वहाँ पे भी एक बल्ज है, उसको सेजरा बल्ज बोलते हैं।
1: अच्छा।
3: 55 किलोमीटर का है ये, खेमकरण के साउथ ईस्ट में लोकेटेड होते हैं।
1: अच्छा।
3: इसको भी जो है दुश्मन ने, पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया हुआ था, बटालियन से ज्यादा स्ट्रेंथ थी
1: जी,
3: और उनके पास जो है और भी जो है टैंक्स वगैरह थे उसमें।
1: अच्छा।
3: और 6 दिसंबर को इसको जो है कैप्चर किया था 48 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने, इन्फ्लिक्टिंग हैवी कैजुअल्टीज ऑन एनिमी। इट वाज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मतलब जो है बहुत ज्यादा जो है फियर्स ऑपरेशन रहा था, बैटल रही थी। अच्छा, इसको कैप्चर करने से क्या था, जो उसके पीछे हरिके डैम है, हरिके जहाँ पे सतलज जो ब्रिज है, वो जो है उसके ऊपर जो है किसी तरह का खतरा जो था वो खत्म हो गया था। दैट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। नीचे अगर हम आते हैं, मतलब वेस्ट में आगे बढ़ते हैं, तो फिर राजस्थान सेक्टर आता है। राजस्थान सेक्टर में हम सब ने 2-3 बार इसका जिक्र किया है, बैटल ऑफ लोंगेवाला का।
1: जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी, आज तक भी लोग याद करते हैं।
3: बिल्कुल याद करते हैं इसको, द फेमस बैटल ऑफ लोंगेवाला। अगेन इट वॉज ए यूनिक एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट।

0: उसके साथ ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था इस कंपनी के ऊपर जो है। डेजर्ट का इलाका है, प्लेन है, एक तो उसमें डिफेंस एक्टिवेट करना बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि आपको नेचुरल जो है, जैसे पहाड़ों में क्या होता है, एक नेचुरल ऑब्स्टिकल होता
1: छिपने की जगह नहीं है,
0: छिपने की जगह कम होती है, ऑब्स्टिकल्स भी नहीं होते,
1: ठीक
0: है, ओके। तो या जैसे कैनाल्स होती है ऑब्स्टिकल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं तो ऑब्स्टिकल होता है, जंगल होते हैं तो ऑब्स्टिकल होता है, तो ये नहीं होता। तो इसमें इन्होंने जो डिफेंस एक्टिवेट करी थी तो टैंक्स इनके ऑलमोस्ट 50 मीटर तक आ गए थे, इतनी पास से आके लड़ रहे थे, और उसमें जो जवान है अंदर बैठे हुए हैं वो अपना डिफेंस में उसको इतना स्ट्रॉन्गली होल्ड करे हुए हैं कि उनको उन्होंने कब्जा करने नहीं दिया। अटैक शुरू होने के बाद से जो है पूरी रात मतलब जो है लड़े हैं, एंड इस बीच में जो है इंडियन एयरफोर्स को जो है,
1: यानी सैनिकों ने सर टैंकों को रोके रखा,
0: एंड बिल्कुल रोक के रखा, ठीक है, उनके पास आर्सेल गन्स थी बट उसके बावजूद जो है, और इन्फेंट्री भी थी जो अटैक कर रही है, इट्स नॉट ओनली टैंक्स हैं जो अटैक कर रहे हैं। तो उसके बाद सुबह सुबह जो है एयरफोर्स ने स्ट्राइक शुरू किए थे जिसमें हम सबको मालूम है कि ऑलमोस्ट दे डिस्ट्रॉयड 17 टैंक्स और 23 जो टैंक्स थे उन्होंने अनसर्विसेबल कर दिए थे, 11 सॉर्टीज करी थी। तो अगेन यूनिक ऑपरेशन, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल रहा था, ठीक है, मतलब दे रियली प्लेड ए मेजर रोल इन इट, एंड ग्राउंड के ऊपर जो ट्रुप्स थे और उनके कंपनी कमांडर साहब थे ब्रिगेडियर के एस चांदपुरी साहब, उस समय वो मेजर थे, He played a vital role, ठीक है। Again, like हमने जैसे जिक्र किया था ब्रिगेडियर होशियार सिंह साहब का, उसी तरह से चांदपुरी साहब ने भी जो है अपनी कंपनी की हौसला अफजाई करी, ठीक है। अब देखिए जवान को मालूम है कि इस समय मैं लड़ रहा हूँ, मेरे सामने से टैंक्स आ रहे हैं, सामने से फायर आ रहा है, एंड आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि नहीं नहीं कोई कुछ नहीं होगा, मैं हूँ तेरे लिए, बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात,
0: ठीक है। एंड ये जो है उन्होंने स्ट्राइक आने तक 23 पंजाब के जो बहादुर जवान थे उन्होंने पोस्ट होल्ड करके रखी जो है। इंडीड ही वाज अवार्डेड विद महावीर चक्र फॉर हिज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रेव लीडरशिप। तो जब तक ऐसे बहादुर
1: बहादुर सिपाही नहीं रहेंगे तब तक जीत तो मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है
0: जी। और जब तक ये लोग हैं
1: जी
0: तब तक इस देश का कोई बाल बांका
1: नहीं कर सकता, बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: जब तक इतने बहादुर जवान हैं हमारे पास और इतने काबिल लीडर हैं तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता,
1: बिल्कुल सर। तो श्रोताओं आज हमने जाना हमारी थल सेना ने किस तरह सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में एक निर्णायक भूमिका निभाई। अब चलते चलते हम इस श्रृंखला के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां ये जानना जरूरी हो जाता है कि इस युद्ध से हमने आखिर क्या पाया और क्या खोया भी। ये बात बिल्कुल लाजिम है कि जिस उद्देश्य के लिए ये युद्ध लड़ा गया उसे हमने गौरवपूर्ण तरीके से प्राप्त भी किया। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम कार्यक्रम की अगली कड़ी में, तो बने रहिए हमारे कार्यक्रम के साथ जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व। सर कार्यक्रम में इस कड़ी में आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जय हिंद पूर्वा जी, एंड जय हिंद श्रोताओं।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन किया अमित कोंदानी ने, और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी अपनी रेडियो मित्र पूर्वा खले। दीजिए नमते इस कार्यक्रम से नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। एक अंतराल के बाद हाजिर होते हैं अगला कार्यक्रम लेकर, बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं।

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आज़ाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारे देश के वीरों को समर्पित कार्यक्रम शौर्य गाथा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुनते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम। आज ये कार्यक्रम समर्पित है मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र को श्रद्धांजलि स्वरूप।

0: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है विशेष कार्यक्रम का। आपके साथ मैं हूं फराज। श्रोताओं, आज बात होगी उस शायर की जिसके ना मालूम कितने शेर हमारे जहन में, हमारे दिल में बसे हुए हैं। वो रचनाकार कौन हो सकता है सिवाय डॉक्टर बशीर बद्र के।
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा।
1: परखना मत,
2: परखने में कोई अपना नहीं,
1: परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना।
2: वाह।
1: बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता।
2: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। फिर से पढ़िए।
0: बशीर बद्र एक ऐसा नाम जिन्हें पीढ़ियां सुनती चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही मोहब्बत से लोग उनको याद करते हैं जितना पहले के जमाने में किया करते थे।
1: और मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ।
2: वाह, बहुत अच्छा। कहाँ
0: बशीर बद्र को अगर याद किया जाए तो एक लफ्ज काफी है और वो है मोहब्बत। मोहब्बतों का शायर बशीर बद्र।
1: अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा।
2: वाह वाह, अच्छा अच्छा। वाह वाह।
0: बशीर साहब का जन्म 15 फरवरी 1935 को हुआ और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ कभी ना रुकने वाले, कभी ना थकने वाले सफर का। बचपन में उनके पिता इस दुनिया फानी को जल्दी ही छोड़कर चले गए और उसके बाद बशीर साहब पर जिम्मेदारियां आईं जिन्हें उन्होंने बखूबी निभाया और फिर सफ़र तय किया पढ़ाई का, तालीम का। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, कुछ अरसे पढ़ाया और वो जब अलीगढ़ में पढ़ते थे उसी दौरान उनकी गज़लें, उनकी शायरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। अब इतना मकबूल और इतना मशहूर कौन हो सकता है कि जो खुद पढ़ रहा हो उसकी गजलें पढ़ाई जाती हों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं।
1: खता

0: उसके बाद बशीर बद्र साहब ने रुख किया मेरठ का और फिर वहाँ कॉलेज में पढ़ाने लगे। फिर सिलसिला चलता रहा और वक्त उन्हें भोपाल ले आया और फिर भोपाल में ही उन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी शाम देखी।
1: मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है।
0: बशीर बद्र को बशीर बद्र बनने में यकीनन जिस तरह से लोगों को कामयाब होने में सालों लगते हैं, उनको भी कई सालों का इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा होता चला गया और बाद में न जाने कितने लोगों ने उनकी शागिर्दी में शायरी को सीखा और उसे आगे बढ़ाया।
1: मुखालफत से मेरी शख्सियत समरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता
2: हूं। वाह वाह वाह वाह, फिर दे बजूर, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह।
0: कितने ही उनके शेर हैं जो लोगों को याद हैं, खास करके युवाओं को। मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूं, मैं हर लम्हे में सदियां देखता हूं, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है, तेरे साथ एक लम्हा बहुत है। या उनका मशहूर शेर जिसने पूरी दुनिया में उन्हें मकबूल कर दिया, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ये इतना मशहूर हुआ कि जब वो बहुत यंग थे तो मीना कुमारी जो मशहूर एक्ट्रेस रहीं, उन्होंने एक मैगजीन में इस शेर को लिखा था और ये कहा था कि इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता, उसकी जिंदगी में बदलाव आते रहते हैं, कभी उरूज तो कभी जवाल। उस वक्त मीना जी को यह नहीं मालूम था कि यह शेर बशीर बद्र साहब का है और बाद में इस शेर को कई लोगों ने अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनके कई शेर ऐसे हैं जो लोगों को जुबानी याद हैं। दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और बहुत से शेर मैं कहां तक बयान करूं।
1: मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी ना मिला।
0: श्रोताओं, अगर बात की जाए जो अवार्ड्स बशीर बद्र साहब को मिले, उनमें 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया 1999 में, और इसके अलावा भी कई अवार्ड्स उन्हें दिए गए। उनकी कई किताबें शाया हुई, कुलियत, बशीर बद्र, आस और बहुत सी। इसके अलावा ये हम जानते हैं कि कई गज़ल सिंगर्स ने उनकी गज़लें गाईं, चाहे वो जगदीश सिंह हों, तलत अज़ीज़ हों। किसी भी महफिल में लोग जाते तो फरमाइश करते कि हमें डॉक्टर बशीर बद्र का कोई कलाम सुना दीजिए।
1: कभी हम मिले भी तो क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, न कभी हमारे कदम बढ़े न कभी तुम्हारी झिझक गई।
2: वाह वाह वाह, अच्छा है, अच्छा है।
0: जब बात डॉक्टर बशीर बद्र साहब की हो तो उनके बारे में हम सब बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसलिए हमने बात की वरिष्ठ साहित्यकार स्कॉलर जनाब डॉक्टर नोमान खान साहब से। उन्होंने अपनी यादों में कुछ इस तरह से याद किया डॉक्टर बशीर बद्र साहब को।
3: बशीर बद्र साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि नेशनल लेवल की नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की ख्याति प्राप्त शायर और अदीब थे, साहित्यकार भी थे, और उनकी अपनी शायरी एक आम डगर से हटकर थी, एक नया ट्रेंड उन्होंने शुरू किया था उर्दू गज़ल का। और वो ट्रेंड ये था कि वो गालिब और मीर और इकबाल की तरह का ट्रेंड नहीं था, बल्कि उन्होंने अपना रिश्ता जोड़ा था अमीर खुसरो, यानी कहते थे अमीर, कबीर, नज़ीर और बशीर, ये उन्होंने अपना एक सिलसिला जोड़ा था। अच्छा, ये चारों जो हैं बहुत बड़े शायर भी हैं और बहुत बड़े अवामी शायर भी हैं। तो बशीर बद्र साहब के साथ एक ख़ास बात ये थी उनकी पॉपुलरिटी की, उनकी शोहरत की, उनकी मकबूलियत की और उनकी आम पसंदीदगी की वजह ये थी कि वो आम आदमी के शायर थे, वो इंसानियत के शायर थे, वो मोहब्बत के शायर थे, वो आम इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो दिनचर्या जिसे हम कहते हैं, उसमें जो रोज़मर्रा छोटे छोटे वाकयात, हादसात और जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको वो ग्रिप करते थे और अपने शेर में ढालते थे। वो जैसे मासूम और भोले और सादा मिजाज इंसान थे, वैसे ही उनकी शायरी भी थी। और उसमें वो बड़े, यानी बड़ी से बड़ी बात जो है वो बड़े आसान लफ्ज़ों में और आसान उसलूब में या स्टाइल में वो अपने बयान कर देते थे। तो इसी वजह से उनकी बात उनके दिल से निकलती थी और उनके श्रोताओं या पढ़ने वालों पाठकों के दिल में उतर जाती थी, क्योंकि उसमें वो अपनी ज़िंदगी का अक्स या छवि देखते थे कि अरे ये तो मेरे दिल की बात है, अरे ये तो मेरे मैं इसे तो मैं रोज़ देखता हूँ, भुगत रहा हूँ, भोग रहा हूँ। अच्छा, ये हमारा कवि तो वो कह रहा है जो मेरे दिल में, मैं नहीं कह पा रहा हूँ, इसे कह दिया।
4: जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है।
3: तो इस वजह से शायरी तो बड़ी शायरी वही होती है, अच्छा शेर उसी को कहते हैं कि जो कि सुनते ही दिल में उतर जाए। तो एक बड़ी खूबी ये थी बशीर बद्र साहब की कि वो उनके अशार बड़े सीधे सादे होते थे। इसमें उर्दू शायरी में इस खूबी को कहते हैं सहले मुमतना। सहले मुमतना के माने होते हैं कि ऐसा अंदाज, इतना आसान अंदाज कि जैसे कि पद और गद दो होते हैं ना, नसर और नज़्म। तो जैसे कि नसर या पद गद जो है वो सीधे सादे अंदाज में जुमलों में होते हैं, सीधी सादी बात कह दी जाती है। शायरी में थोड़ा सा वजन का भी ख्याल रखना पड़ता है, फ़न का, तकनीक का, और उसके अपने दायरे और उसकी अपनी खसूसियात है, उस हिसाब से वो चलते हैं। तो शायरी में जब बात कही जाती है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कही जाती है। हर आदमी, वरना तो हर आदमी शायर बन जाए, हर आदमी शायर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि वो मौजू तबा नहीं होता, या उसका वो मुशाहिदा ऑब्ज़रवेशन वो नहीं होता, या उसका तजर्बा ऑब्ज़रवेशन नहीं बन पाता, या वो महसूस तो सब करते हैं, देख हम भी रहे हैं, आँखें हमारे पास भी है, सोच हम भी रहे हैं, अक्ल हमारे पास भी है, और ऐसा नहीं है, डिक्शन भी हमारे पास है, अल्फाज भी हमारे पास है, और हम जान समझ रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो यही तो फ़र्क है शायर और गैर शायर में, कि अगर वो शायरी के औसाफ से, उनकी फ़नी नज़ाकतों से वाकिफ़ है और उसके अंदर एक दिल गुदाख्ता जिसे कहते हैं नर्म दिल, हसास दिल, दिल सबके पास है, लेकिन शायर का दिल बड़ा नर्म होता है, उसकी सोच भी बड़ी गहरी होती है, उसके देखने का अंदाज़ और सोचने का अंदाज़ भी अलग होता है। तो ज़ाहिर है कि इसी वजह से वो जब शेर में उन चीज़ों को ढालता है, अपनी रचनाओं में ढालता है, तो वो एक अलग शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और वो शक्ल ऐसी होती है कि कोई अनजान शक्ल नहीं होती, कोई ऐसी नहीं होती जिससे हम वाकिफ़ नहीं हों, लेकिन वो हमें सुनने में या पढ़ने में अच्छी मालूम होती है, हमारा मन मोह लेती है, हमारे दिल को मुतासर करती है, हमारे जहन की खिड़कियों को रोशन करती है, खोलती है, और हमें फ़िक्र पर आमादा करती है, और एक जिसको कहते हैं आनंदित करती है, हमें महसूस करती है, और हमारी जो अंदर के एहसास है उसको जगाती है, और हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सारी बातें इनके अंदर, यानी बशीर बद्र साहब के कलाम में थीं, और उन्होंने कोशिश ये की कि हमारी उर्दू शायरी जो एक ख़ास डगर से चल रही थी, जिसको हम कहते हैं रवायती शायरी दो किस्म की, एक तो रवायती है क्लासिकल, और एक है जदीद मॉडर्न। तो उनके साथ ये था कि उन्होंने रवायत से भी रिश्ता तोड़ा नहीं, जो परंपरा शायरी की है उसको भी बरकरार रखा, लेकिन जो नई डगर है, जो नए तकाजे हैं, जो नई ज़िंदगी है,

उन्होंने अपनी करियर का आगाज मेरठ कॉलेज में एक उस्ताद की हैसियत से किया था, फिर वो शायरी की तरफ आए, फिर वो शेर कहने लगे, फिर वो शेर भी उन्होंने यही हुआ कि आम डगर से हटकर शेर कहे। तो एक ताजगी, एक नयापन, एक नया लबो लहजा, एक मुनफरिद लबो लहजा उनके यहाँ हमें नज़र आता है। उनका अपना डिक्शन है कि कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, या ये कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। और भी बहुत से अशार हैं कि जो कि ऐसे हैं कि जो जिनको के हम कह सकते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गज़ल है। अब डिक्शन देखिए और अंदाज देखिए, गज़ल किसे कहते हैं ये उसकी डिफिनेशन देखिए कि तितली के नज़ाकत क्या है गज़ल की, कि तितली के नाजुक पंखों पर आंसू की तहरीर गज़ल है, लफ्ज़ों की मीनाकारी को इल्हामी अशार न जानो। ये जो लफ्ज़ों की मीनाकारी है, पच्चीकारी है, जो उसका बनावट है, जो सजावट है, ये इसको इल्हामी मत समझो। इल्हामी माने आसमानी, ऊपर से उतरी मत समझो। ये जो है ये शायर के अपनी फिक्र और दिलो दिमाग और उसकी सलाहियतों का इजहार है। दूसरी कहते हैं कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ। अब आप देखिए अंग्रेजी के अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी के भी कर रहे हैं, उर्दू के भी कर रहे हैं, और भी मतलब उनके यहाँ, और वो लबो ले जाए जो आम इंसानों का लबो ले जाए। कोई फूल धूप की पत्तियों में हरे रिबन से बंधा हुआ, वो गजल का लहजा नया नया, न कहा हुआ न सुना हुआ। या इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, इतनी मिलती है मेरी गजलों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। या कि उदासी का ये पत्थर आंसुओं से नम नहीं होता, हजारों जुगनुओं से भी अंधेरा कम नहीं होता। या हमारा बदन धूप का बाग है, यहाँ चांदनी और शबनम कहाँ। या वो शेर जो अब बिल्कुल चरितार्थ हो गया, उन्हीं के ऊपर चस्पा हो गया, वो जो है ना कि न जाने किस गली में उजाले अपनी यादों के, हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो ये शेर मैंने ट्रकों के पीछे भी लिखा देखा, ऑटो रिक्शा के पीछे भी लिखा देखा, सत्ता के गलियारों में भी गूंजता हुआ देखा, और इसके अलावा पढ़े लिखे लोगों में भी इसको दोहराया गया, और होटलों में और आम लोगों के ज़बान पर भी। तो उनके अशार की या उनके रचनाओं की खूबी ये थी, उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि ज़रबुल मसल। ज़रबुल मसल मतलब जो मुहावरा बन जाए, कहावत बन जाए। जैसे कि मुहावरे का अपना एक बैकग्राउंड होता है, एक पसमंज़र होता है, कोई ना कोई कहानी, कोई वाक़या उसके पीछे होता है, उसी का वो मुहावरा बनता है, कहावत का भी है ये। तो जो अब हम कभी कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत, अब इसके पीछे एक पूरी कहानी है। हम कह देते हैं, सुनने वाला सुन लेता है, समझने वाला समझ भी लेता है। तो इसी तरह उनके अशार जो हैं वो उन्होंने किस बैकग्राउंड में कहे हों, हो सकता है उनका जो है पसमंज़र या बैकग्राउंड दूसरा हो, पृष्ठभूमि दूसरी हो, लेकिन वो उसमें इतनी खासियत खूबी है कि मुहावरे की तरह वो लगता है वो हमारा तजर्बा है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो हमारी ज़िंदगी की कहानी है, वो हमारे सामने का वाक़िया है। तो ये जब खूबी किसी फनकार में पैदा हो जाती है तो फनकार बड़ा हो जाता है। कोई

0: मिला कर
1: कुछ आपकी आखिरी याद उनके साथ हो, कोई किस्सा हो अगर आप शेयर करना चाहें।
2: यादें तो बहुत सी हैं, अब आपने क्योंकि सवाल कर लिया है तो मैं आपको बताऊं कि असल में मेरी पहली मुलाकात उनकी उस वक्त हुई जब मैं सेफिया कॉलेज में एमए कर रहा था, 75 की बात है। हमारे यहाँ सालाना मुशायरा होता था स्टूडेंट यूनियन का, उसमें शोरा को बुलाते थे, इनको पहली बार 75 में बुलाया और ये पहली बार ही इन्होंने ऐसा नक्श कायम किया कि हर साल बुलाए जाने लगे। अब स्टूडेंट यूनियन के ये जो स्टूडेंट्स होते नहीं साहब उन्हें तो ज़रूर बुलाए, आप किसी को बुलाइए उन्हें ज़रूर, तो एक बात तो ये, तो मुलाकातें होती रहती थी। फिर जब वो यहाँ भोपाल में सेटल हो गए और यहीं शादी हो गई, यहीं सेटल भी हो गई, मकान भी बना लिया, तो एक बार उनका फ़ोन आया कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, अपने इशरत कादरी साहब का फ़ोन आया कि हम आ रहे हैं आपके यहाँ और डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं, बशीर बद्र साहब। कहा कि मुझ पर एक नंबर आ रहा है बहुत बड़ा, 500-600 सफ़े तो हो चुके हैं उसके, और मैंने उसको अभी रुकवा दिया है कि अभी 2 दिन और रुक जाइए, अब आप सब बहुत बड़े बड़े लोगों के मज़मून शामिल है, मैं चाहता हूँ आपका मज़मून भी इसमें शामिल हो, आपका आर्टिकल भी मुझ पर। तो मैंने कहा मेरे पास तो आपके मजमू है ही नहीं सिवाय एक आमद के, तो उन्होंने अपना बैग खोला और सारे मजमू मेरे सामने रख दिए और कहा यही कि बस जल्दी करना है, इसको 2 दिन की मोहलत दी। खैर मैं बैठा, मैंने दिन रात देख करके उसको किया और जाके उनके घर दे आया। मैं 1 घंटे के बाद उनका फ़ोन आया कि आज आप डिनर हमारे साथ, आपकी फैमिली विद फैमिली आप हमारे साथ। अरे भाई क्यों, नहीं बस इनकार मत कीजिए, बहुत खुश। फिर वहाँ उन्होंने तफसीली गुफ्तगू की, कहा कि बहुत अच्छा मज़मून आपने लिखा, इतने कम वक्त शॉर्ट नोटिस पे इतना अच्छा मज़मून लिखना, 20 पेज का मज़मून है। खैर छप गया। उसके बाद फिर एक बार फ़ोन उनका आया कि मुझ पर एक साहब PhD करना चाहते हैं, मैं सेफिया कॉलेज में HOD था, और मुझसे पूछ रहे थे कि भाई कौन हम कि गाइड किसको बनाए, तो मैंने कहा नौमान खान को, मैंने वादा उनसे कर लिया है, वो मैं बात कर लूँगा, ये भी कहा, तो आपको बनना है। अब तो हुक्म था, बन गए, वो PhD हुई, अवार्ड हुई, वो काम हुआ। उसके अलावा उनकी जो मिसेज हैं राहत बदर, वो मेरी स्टूडेंट रही हैं, मैं मेरे अंडर में किया, डिसर्टेशन भी लिखा। जब वो PhD करने लगी तो मैं तो दिल्ली चला गया था, मुझसे कहा कि आप कब आ रहे हैं, तो मैंने बताया कि फला छुट्टी में आऊँ, हाँ तो मुझे आपके 1/2 घंटा चाहिए। मैं आया चला गया कि ये आपकी जो है शागिर्दा, ये मेरी मिसेज, ये PhD करना चाहती हैं जदीद गज़ल पे, और इसके इनकी सिनॉप्सिस आपको बनाना है। मैंने फ़ौरन उनकी सिनॉप्सिस बनाई, 10 मिनट में बना ली, उनको भी अवार्ड हुई। तो मतलब ये कि वो कदरदान थे, वो समझते थे किससे क्या काम लेना है, कि कौन किस किस उसका है सलाहियत का, ये भी उनको अंदाज़ा था। और ताल्लुकात उनके बहुत वसी थे, क्योंकि उनके चाहने वाले हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में, जहाँ जहाँ उर्दू है और जहाँ जहाँ उर्दू बोली या समझी जाती, सभी जगह उनको मानते और जानते थे और पसंद करते थे, और डिमांड पर वो बुलाए जाते थे, क्योंकि वो मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत थे। जिस मुशायरे को वो अटेंड कर लेते तो मुशायरा कामयाब हो जाता था। एक बात और भी थी कि वो कम लोग शायद जानते हों कि वो बहुत अच्छे नाज़िम भी थे, कंपेयर भी थे, बहुत अच्छे मुशायरा कंडक्ट करते थे। जैसे कि मलिकज़ादा मंजूर साहब, एक छाप थी मुशायरे कंडक्ट करने की, निज़ामत की, ऐसी जब वो भी करते थे तो बहुत अच्छे अंदाज में, पढ़े लिखे आलिमाना अंदाज में करते थे। बांसुरी की सी सुरीली सुरीलापन था कि जो बिल्कुल दिलों को खींच लेता था अपनी तरफ। और फिर उनके पढ़ने का अंदाज, ख़ास अंदाज से पढ़ते थे, हाँ तहत हो चाहे तरन्नुम, वो पहले तहत में ही पढ़ते थे, फिर आवाज़ आती थी अरे साहब तरन्नुम में भी होगी, तो वो गायक वाला नहीं था, वो अलग ओरिजिनल तरन्नुम था, अलग अंदाज होता, उनका भी अपना ओरिजिनल तरन्नुम था।
0: तुझे भूल जाने की कोशिशें कभी कामयाब न हो सकी, तेरी याद शाखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई।
3: वाह वाह वाह,
2: बड़े फनकारों की कमी बहुत वैसे ही महसूस की जाती रही है और की जा रही है। एक ये भी थे और एक अरसे से बीमार भी थे, तो बिल्कुल इनएक्टिव भी थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें सामने भी नहीं आ रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद वो जितना कंट्रीब्यूट कर गए हैं, जो कुछ हमें दे गए हैं, वो ऐसा है कि वो हमारी अपनी धरोहर भी है, हमारे लिए काबिल फ़ख्र भी है, हमारे अदब के लिए, हमारी ज़बान के लिए, हमारे मुल्क के लिए, और इसी के साथ साथ ख़ुद उनके लिए भी कि वो अपनी जगह भी महफूज कर गए कि जब भी उर्दू गज़ल की बात चलेगी, जब भी उर्दू शायरी की बात होगी, और जब उसमें ये होगा कि भाई चंद नुमाया या अहम नाम कौन कौन से हैं उर्दू गज़ल के, तो जाहिर है कि उसमें, उस लिस्ट में बशीर बद्र का नाम भी आप
4: जरूर आएगा,
2: जरूर शामिल करने पर
4: नहीं पड़ेगा।

श्रोताओं, बशीर बद्र जैसे लोग कभी दुनिया से नहीं जाते। कहते हैं ना कि कलाकार, साहित्यकार, अदीब अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं, वही बात बशीर साहब पर भी बिल्कुल फिट है। उनके काम के जरिए, उनके शेरों के जरिए वो सदियों तक हमारे जहनों में, हमारे दिलों में बसे रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारा आज का विशेष कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: न जी भर के देखा न कुछ

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

पुर्तगाल के शाही अनाथ ओरफास डेल री। क्या आप जानते हैं कि 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली साम्राज्य ने एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए शाही अनाथों को एक रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था? लिस्बन के बंदरगाहों से निकलने वाली ये युवतियां केवल भाग्य की तलाश में नहीं थी, बल्कि वे एस्टादो द इंडिया को स्थायी बसावट के माध्यम से स्थिर करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा थीं। ये ओरफास डेल री अक्सर उन मृत रईसों या सैनिकों की बेटियां होती थीं जिन्होंने पुर्तगाली क्राउन की सेवा की थी। क्राउन ने हर साल लगभग 10 ऐसी युवतियों को एशिया भेजने का प्रावधान किया था। उनके विवाह और भविष्य के पतियों को जमीन से जोड़ने के लिए राजा उन्हें दहेज के रूप में प्राजो प्रदान करते थे। प्राजो अनिवार्य रूप से भूमि अनुदान या राजस्व अधिकार थे जो मुख्य रूप से प्रोवेंशिया दो नॉर्ते उत्तरी प्रांत में केंद्रित थे। उत्तरी प्रांत में वसई, दमन और चौल जैसे क्षेत्र आते थे। सन 1530 के दशक में इन क्षेत्रों को दो कारणों से हासिल किया गया था। पहला, गोवा के लिए खाद्य आपूर्ति लाइनों को सुरक्षित करना और दूसरा, रईसों की जमीन की भूख को शांत करना। इन अनाथों को दहेज में प्राजो देकर क्राउन ने कासादोस फ्रोंटेइरोस अर्थात विवाहित सीमा रक्षकों का एक वर्ग तैयार किया। इन जमींदारों के लिए ये अनिवार्य था कि वे गांव के राजस्व के बदले अपने जमीन की रक्षा के लिए आर के बसियर्स यानी बंदूकधारियों की एक छोटी सी सेना बनाए रखें। पुर्तगाल में मुर्गादियो कानून के तहत केवल सबसे बड़ा बेटा ही पारिवारिक संपत्ति का वारिस होता था। छोटे बेटे और अवैध संतानें अक्सर अतिरिक्त संसाधन बन जाते थे जिन्हें साम्राज्य की सीमाओं पर भेज दिया जाता था। एक शाही अनाथ से शादी करना इन नए पुरुषों के लिए प्रतिष्ठा का द्वार था। इसने उन्हें प्राजेरो लॉर्ड्स में बदलने का मौका दिया। उत्तरी प्रांत में ये प्रणाली पहले से मौजूद स्थानीय अधिकारों जैसे भारतीय इस्लामी एकता या राजस्व असाइनमेंट के ऊपर आरोपित की गई थी। ये प्राजो अक्सर कई पीढ़ियों के लिए दिए जाते थे। इस व्यवस्था ने एक अनूठा सामाजिक परिदृश्य बनाया जहां पुर्तगाली महिलाएं दहेज अधिकारों की प्राथमिक धारक होने के नाते इन बस्तियों का आधार बन गईं। हालांकि ओरफास डेल री की संख्या बहुत कम थी, लेकिन उनका प्रभाव गहरा था। उन्होंने भारतीय तट पर एक सामंती व्यवस्था के उदय को सुगम बनाया जहां पुर्तगाली परिवार एशियाई जमींदारों की तरह रहने लगे। ये बदलाव साम्राज्य के शुरुआती समुद्री व्यापारिक फोकस से हटकर भूमि आधारित स्थिरता की ओर एक बड़ा कदम था।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान, और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे डीआरडीओ के बारे में, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: चरण स्पर्श दादाजी।
2: अरे अरे अरे अरे बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज तो मेरी प्यारी रुचि बिटिया का जन्मदिन है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा।
1: थैंक यू दादू।
2: तो बताओ, आज जन्मदिन पर क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ।
2: अच्छा, मतलब ज्ञान वाला उपहार चाहिए? तो फिर जरूर पूछो बिटिया, क्या उपहार चाहिए?
1: दादू, अब तक आप मुझे देश की सेनाओं के बारे में बता रहे थे कि कैसे भारतीय थल सेना, वायु सेना और दूसरी सेनाएं हमारे देश की रक्षा करती हैं। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन सेनाओं के पास जो हथियार, मिसाइलें, रडार, टैंक और रक्षा उपकरण होते हैं, उन्हें कौन बनाता है और वो कौन कौन से संस्थान हैं जो देश की सुरक्षा के लिए नई तकनीक तैयार करते हैं?
2: बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। देखो बेटा, अक्सर लोग सिर्फ सीमा पर खड़े सैनिकों को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी काम करते हैं, जो देश को मजबूत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं।
1: मतलब देश की रक्षा सिर्फ सैनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी करते हैं दादाजी?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल। सैनिक सीमा पर लड़ते हैं और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: क्या वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं से भी युद्ध लड़े जाते हैं?
2: बिल्कुल। चलो बेटा, आज तुम्हारे जन्मदिन के लिए ये बेहतर उपहार होगा। हम चर्चा करेंगे देश के संस्थानों के बारे में नए सिरे से। चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब से मैं तुम्हें देश के ऐसे ही महान संस्थानों की कहानी सुनाऊंगा बेटा, जहां देश की उन्नति के लिए दिन रात तकनीकों पर काम किया जाता है।
1: सच में दादू?
2: हाँ बेटा।
1: तो फिर शुरुआत किससे करेंगे?
2: शुरुआत करेंगे भारत के सबसे बड़े रक्षा अनुसंधान संस्थान से, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भी कहते हैं, समझे बेटा? और शॉर्ट में बोलते हैं DRDO।
1: DRDO यानी वो संस्थान जहां देश के लिए मिसाइलें और आधुनिक तकनीक बनाई जाती है।
2: हाँ बिटिया, जहां विज्ञान देशभक्ति से मिलता है और जहां से निकलती है मिसाइलें, रडार, ड्रोन, युद्ध तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की ताकत।
1: दादू, तो बताइए ना कि DRDO क्यों बना, ये कैसे काम करता है और कैसे भारतीय वैज्ञानिक देश को नई शक्ति दे रहे हैं, और DRDO में नौकरी पाना मुश्किल है या फिर आसान है?
2: आसान तो नहीं है बेटा, पर जिसने मेहनत की हो, लगन से पढ़ाई की हो, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा हो, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं।
1: दादू।
2: हाँ बेटा।
1: आपके एक दोस्त जो हमारे घर आया करते थे, वो मोहन अंकल, वो भी तो DRDO में वैज्ञानिक थे ना, उन्होंने आपको जरूर बताया होगा कि वहाँ मिसाइलें कैसे बनती हैं।
2: तुम्हें खूब याद रहता है हा? मेरा कौन दोस्त कब आया था?
1: हाँ दादाजी।
2: हाँ, DRDO सिर्फ मिसाइल नहीं बनाता, वो तो हमारे देश की रक्षा विज्ञान की रीढ़ है। ये संस्था वो जगह है जहां हमारे वैज्ञानिक रात दिन मेहनत करते हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर बने और विश्व में मजबूती से खड़ा हो सके।
1: दादाजी, अब तो मुझे इसके बारे में डिटेल में बताइए, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई थी और इसका इतिहास क्या है?
2: देखो बेटा, DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। असल में ये दो संस्थाओं के विलय से बना था, रक्षा विज्ञान संगठन, डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन और तकनीकी विकास निदेशालय, डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। और इसका उद्देश्य था भारत के सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित करना, यानी हमारे सैनिकों को ऐसे हथियार, उपकरण और तकनीक देना जो पूरी तरह हमारे देश में बने हों।
1: मतलब अब हमें हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। दादाजी
2: बिल्कुल सही कहा बेटा, आज भारत के पास अपनी मिसाइलें हैं, अपने रडार सिस्टम हैं, यहाँ तक कि अपनी लड़ाकू तकनीकें भी हैं, और ये सब DRDO की देन है।
1: वैसे किस तरह की लड़ाकू तकनीक दादाजी?
2: आज DRDO ने देश को अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसी मिसाइलें दी हैं बेटा। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस बनाया है और सैनिकों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर ड्रोन तक तैयार किए हैं। उनके वैज्ञानिक न केवल रक्षा में बल्कि अंतरिक्ष, साइबर सुरक्षा और मेडिकल तकनीक में भी योगदान दे रहे हैं।
1: वाह दादाजी, मतलब DRDO सिर्फ प्रयोगशाला नहीं बल्कि देश की रक्षा का मस्तिष्क है।
2: हाँ बेटा बिल्कुल सही कहा, DRDO वही है जो सीमा पर सैनिक की बंदूक में जान डालता है और आसमान में उड़ते विमान को भारतीय आत्मा बना देता है।
1: दादाजी अब मैं भी वैज्ञानिक ही बन जाऊं, ऐसा लग रहा है। मैं भी देश के लिए कुछ नया बनाऊंगी ताकि जब कोई कहे मेड इन इंडिया तो उसमें मेरा भी योगदान हो।
2: शाबाश मेरी बच्ची, यही तो असली देशभक्ति है, सिर्फ तिरंगा लहराना नहीं बल्कि अपने ज्ञान, अपनी मेहनत से उसे ऊंचा उठाना भी देशभक्ति है।
1: दादू एक सवाल है कि क्या DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है?
2: बहुत विशाल बेटा, बहुत विशाल संस्था। DRDO का लगभग 41 प्रयोगशालाओं और 5 DRDO युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं DYSLS का अपना नेटवर्क है, या कहें कि एक संगठन है जिसमें हजारों वैज्ञानिक, तकनीकी और सहायक कर्मचारी देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कई अलग अलग विषयों को कवर करने वाली रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास में काम कर रहे हैं।
1: 5,000 मिसाइलें शामिल हैं दादू?
2: हाँ बेटा, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, नाग, आकाश, अलग अलग वर्ग की मिसाइलें इसमें शामिल हैं। DRDO के द्वारा ही विकसित तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान LCA भी हमेशा खूब चर्चा में रहता है। रुस्तम, निशांत, इन जैसे UAVs यानी ड्रोन्स बनाने में DRDO का अहम योगदान है। अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश, ये सभी मिसाइलें तो अभेद मिसाइलें हैं बेटा, जिनको बनाने की उपलब्धियां DRDO ने काफी पहले ही हासिल कर ली थी। अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर है बेटा, 5,000 किलोमीटर।
1: अच्छा दादाजी, ये तो मिसाइलों का पूरा भंडार है।
2: हाँ बेटा, पूरा भंडार। दरअसल संस्था का विजन है कि देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना है।
1: अच्छा दादू, क्या ये सब DRDO अकेले करता है?
2: नहीं बेटा, DRDO ये सब अकेले नहीं करता। इसे हाल इसरो, BEL और कई निजी कंपनियों से सहयोग मिलता है। आजकल DRDO और प्राइवेट इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप तेजी से बढ़ रही है। इससे न केवल नई तकनीकें तेजी से बनती हैं, बल्कि युवाओं के लिए करियर के मौके भी बढ़ते हैं।
1: अच्छा, तो क्या DRDO ने भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का डिजाइन भी खुद तैयार किया था?
2: हाँ बेटा, साथ ही UVS जैसे रुस्तम, निशांत का निर्माण DRDO ने किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आधारित आधुनिक युद्ध प्रणालियों के लिए AI आधारित निगरानी और लक्ष्य पहचान, क्वांटम संचार, एनक्रिप्शन और साइबर सुरक्षा पर शोध, ये सब DRDO की उपलब्धियां हैं।
1: मतलब विज्ञान सिर्फ नई खोजों के लिए ही नहीं, सुरक्षा के लिए भी होता है दादाजी।
2: बिल्कुल सही बेटा। मोहन जी से चर्चा चल रही थी तब उन्होंने बताया,
1: अच्छा,
2: कि आजकल के युवा वैज्ञानिक हमसे भी एक कदम आगे हैं।
1: वो कैसे भला?
2: देखो बेटा, अब AI आधारित सर्विलांस सिस्टम यानी आर्टिफिशियल सर्विलांस से दुश्मन की पहचान ऑटोनोमस ड्रोन्स यानी बिना इंसान के उड़ने वाले ड्रोन्स और बैटलफील्ड रोबोट्स यानी खुद ही ऑपरेशन करने वाले रोबोट्स पर काम कर रहे हैं। देखना, तुम भविष्य का भारत आज के भारत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर पाओगी बेटा।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं, इसका मतलब DRDO का काम सिर्फ एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहा।
2: हाँ बेटा बिल्कुल, इसमें कई क्षेत्र आते हैं, जैसे वैमानिकी, एरोनॉटिक्स, आयुध वेपन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स लड़ाकू वाहन, कॉम्बैक्ट व्हीकल, इंजीनियरिंग सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, मिसाइल, उन्नत कंप्यूटरिंग और सिमुलेशन, नौसेना प्रणाली, जीवन विज्ञान, प्रशिक्षण, सूचना प्रणाली और यहाँ तक कि कृषि भी।
1: हे भगवान, ये तो काफी लंबी सूची है दादू। मुझे तो लगा था ये कोई एक सब्जेक्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन होगा और DRDO बस मिसाइल बनाता होगा, पर ये तो अपने आप में कई संस्थाओं का अच्छा खासा एक संगठन है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी का महासागर है दादू।
2: बिल्कुल बेटा, DRDO का विजन है कि भारत को एक ऐसी अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीकें देना जो हमारी सुरक्षा को मजबूत करे, और यही आत्मनिर्भर भारत की असली ताकत है।
1: तो क्या इस संस्था का विजन बेहतर हथियार बनाना है?
2: नहीं, सिर्फ हथियार बनाना नहीं, बल्कि DRDO वैज्ञानिक अनुसंधान और रक्षा तकनीकी विकास के कई क्षेत्रों में कार्य करता है। इस संस्था का विजन है देश को अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा और सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों के साथ सशक्त बनाना।
1: तो DRDO भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने की दिशा में अग्रसर है।
2: हाँ बेटा, और ये न केवल भारत की सैन्य जरूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात क्षमता भी बढ़ा रहा है। DRDO की तकनीकों का उपयोग नागरिक क्षेत्र जैसे कृषि, मेडिसिन में भी किया जा रहा है।
1: दादाजी, हमारे पास तो पहले से ही कई अत्याधुनिक रक्षा उपकरण है, तो और हथियारों के निर्माण की जरूरत भला क्यों है? वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि विज्ञान से शांति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, युद्ध को नहीं।
2: हाँ बेटा, देश को मजबूत रखना ही असली शांति है बेटा। अगर हमारे पास तकनीक और हथियार ना हो तो दुश्मन हमारी शांति छीन सकता है। वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं बलस्य मूलम विज्ञान, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को संचालित करता है। इसलिए DRDO ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, खासकर सैन्य प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में बेटा।
1: दादाजी, DRDO की और क्या क्या उपलब्धियां हैं? उसके सबसे ताकतवर हथियार कौन कौन से हैं? जरा ये भी बताइए।
2: बड़ा अच्छा सवाल है बेटा, शाबाश। देखो बेटा, DRDO रोज विकास की नई उड़ान भर रहा है। अब इसने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। क्या तुम यकीन करोगे कि इसकी कुछ खास मिसाइलें दुनिया भर में अब अपनी धाक जमा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बेटा। इनके पास अग्नि मिसाइलों की एक पूरी श्रृंखला है जिसमें अग्नि 5 की रेंज करीब 5000 किलोमीटर है। ये भारत की स्ट्रेटेजिक क्षमता है।
1: बिल्कुल होगा दादाजी, हमारे वैज्ञानिक दिन रात इतनी मेहनत जो कर रहे हैं। दादाजी, क्या और भी तकनीकें हैं इस तरह की?
2: हाँ बेटा, क्वांटम कम्युनिकेशन लैब यानी हैकिंग प्रूफ संचार व्यवस्था, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी लेजर और गामा रे बेस्ट हथियार देश के पास होंगे। आने वाली भविष्य की कुछ बेहतरीन तकनीकें हैं बेटा जो भारतीय रक्षा प्रणालियों को और मजबूत बनाएगी।
1: दादाजी, ये सब सुनने में तो बिल्कुल किसी हॉलीवुड फिल्म के जैसा लग रहा है।
2: हमारे पास मालवेयर डिफेंस, साइबर शील्डिंग और जीरो डे वल्नरेबिलिटी डिक्शन, इन जैसी तकनीकें विकसित हैं। ये सब सुनने में भले ही फिल्मों जैसे लगे बेटा, लेकिन मजे की बात ये है कि ये सब फिल्मों में नहीं बल्कि हम ये सब असली दुनिया में करने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: मैं समझी नहीं दादाजी।
2: रुचि बेटा, DRDO सिर्फ हथियार नहीं बना रहा है, ये तो बायो डिफेंस जैसे CBRN, सुटस, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर और बायो डिटेक्शन किट्स भी बनाता है। कोविड महामारी के वक्त में इनकी टेक्नोलॉजी लाखों जिंदगियां बचाने में काफी मददगार साबित हुई थी बेटा। साइबर लैब जैसी विकसित तकनीकों की मदद से देश की सुरक्षा डिजिटल सीमाओं के माध्यम से की जा रही है।
1: यानी डीआरडीओ का मिशन है जमीन, हवा, समुद्र, अंतरिक्ष की सुरक्षा और साथ ही साइबर रक्षा। और सुरक्षा डोमेन में अत्याधुनिक सेंसर, हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्म और इससे जुड़े उपकरणों के डिजाइन बनाना और इनका विकास करना, साथ ही साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अनुसंधान, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, औषधियाँ, जैविक रक्षा के लिए खोज और अनुसंधान करना। सही समझा ना मैंने दादाजी?
2: शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझा। डीआरडीओ को हर तकनीक का परीक्षण, टेस्टिंग करना पड़ता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में थार रेगिस्तान से लेकर अंडमान तक, रेत, पहाड़, समंदर, हर जगह परिस्थिति, मौसम और तापमान के आधार पर किसी भी परीक्षण में हजारों चुनौतियां होती हैं बेटा। इसके अलावा रिसोर्सेज की लिमिटेशन कई बार लक्ष्य तक पहुंचने में अड़चने पैदा करती है।
1: दादाजी, फिर तो कभी कभी ये मिशन फेल भी होते होंगे?
2: हाँ बेटा, कई बार ये परीक्षण फेल हो जाते हैं। कई बार विदेशी तकनीक पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, लेकिन वैज्ञानिक हार नहीं मानते। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने नया जोश भर दिया है। भारत अब खुद के हथियार बना रहा है और दुनिया को भी बेच रहा है। ये डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की मेहनत का फल है बेटा। डीआरडीओ हर युवा के भविष्य का सपना है।
1: वाओ। अच्छा दादाजी, ये बताइए, क्या डीआरडीओ में सिर्फ इंजीनियर ही जा सकते हैं?
2: नहीं बेटा, डीआरडीओ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, साइकोलॉजी, लाइफ साइंसेज, इन सभी कई शाखाओं के लोग काम करते हैं। यहाँ तक कि डीआरडीओ में कानूनी विशेषज्ञ, एचआर, प्रशासनिक अफसर, अकाउंट्स आदि की भी जरूरत होती है बेटा।
1: अच्छा, तो क्या मैं डीआरडीओ ज्वाइन कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकते हो। अगर तुम्हें विज्ञान से प्यार है तो डीआरडीओ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा है बिटिया। और अभी तो डीआरडीओ ने और भी कई कई नई सारी पहल की हुई हैं, जिनमें टेक ड्राइव, यंग साइंटिस्ट लैब्स, आईडेक्स, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस शामिल है, जहां तुम जैसे छात्र छात्राएं न सिर्फ सीख सकते हैं बल्कि नए आइडिया पर काम भी कर सकते हैं।
1: पर दादाजी, जब कोई डीआरडीओ में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे ट्रेनिंग कहाँ से और कैसे दी जाती है?
2: डीआरडीओ में प्रशिक्षण भी एकदम वैज्ञानिक तरीके से होता है। जैसे ही कोई युवा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बी के रूप में नियुक्त होता है, उसे सबसे पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ट्रेनिंग एकेडमी में भेज दिया जाता है। डीआरडीओ हेडक्वार्टर दिल्ली में प्रारंभिक ट्रेनिंग दी जाती है बेटा। ये ट्रेनिंग करीब 4 से 8 हफ्तों की होती है, जिसमें उन्हें रक्षा विज्ञान, संगठन की नीतियां, प्रशासनिक प्रक्रिया, साइबर सुरक्षा और कार्यशाला प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: यानी सीधा मिसाइल नहीं, पहले तैयारी।
2: हाँ बेटा, सीधा मिसाइल पे ही थोड़ी आ जाएंगे अपन। हाँ, इसके बाद उन्हें उनकी संबंधित प्रयोगशाला में भेजा जाता है बेटा, जहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। मसलन मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए DRDL और RCL हैदराबाद, कंप्यूटर साइंस और AI के लिए CIR या DYALAI बेंगलुर, बायो डिफेंस के लिए INMS दिल्ली या DIPAS के अलावा कुछ वैज्ञानिकों को IITS, IISC, इसरो या विदेश तक भेजा जाता है MTech या PhD करने के लिए।
1: अच्छा दादाजी, भारत में DRDO की प्रमुख लैब्स कहाँ कहाँ पर है?
2: देखो बेटा, DRDO की प्रयोगशालाएं पूरे भारत में फैली हुई हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे कुछ प्रमुख राज्य, तेलंगाना के हैदराबाद में DRDL, RCI, ASL में मिसाइल एवियोनिक्स की लैब है। कर्नाटक के बेंगलोर में ADA, ADE, CAIR, LRDE में विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स AI की।
1: अच्छा, तो इस तरह दिल्ली, मुंबई में और अन्य शहरों में भी तो होंगी?
2: हाँ बेटा, इसी तरह दिल्ली NCR के DRDO हेडक्वार्टर INMS दिल्ली या DIPAS में जीवन विज्ञान बायो डिफेंस की लैब है। वहीं तमिलनाडु चेन्नई के CVRDE में लड़ाकू वाहन और सैन्य इंजीनियरिंग की लैब है बेटा। महाराष्ट्र पुणे नागपुर ARDI हथियार प्रणाली की और उत्तराखंड देहरादून में IRDE इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन की।
1: दादाजी, क्या इनके कोई परीक्षण लैब्स भी हैं?
2: हाँ बेटा, बिल्कुल है। राजस्थान के जोधपुर में DMRL, DLJ में सामग्री और उच्च तापमान परीक्षण की लैब है। ओडिशा के बालासोर में मिसाइल परीक्षण रेंज RTR की, और गुजरात के जगाड़िया में नवीन निर्माण सामग्री की। वहीं गोवा में नौसेना प्रणालियों की टेस्टिंग लैब है बेटा।
1: मतलब DRDO का नेटवर्क पूरे भारत में है दादाजी।
2: बिल्कुल बेटा, और यही इसकी ताकत है। देश के हर कोने में रक्षा विज्ञान की मशाल जल रही है। रुचि बेटा, हमेशा याद रखना, ज्ञान ही शक्ति है और विज्ञान ही रक्षा, दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान शक्ति का आधार है, और तुम कभी भी इन दोनों में से एक विकल्प लेकर अपना जीवन नहीं चला सकते। तुम्हें हमेशा जीवन में ज्ञान और शक्ति का तालमेल बैठा कर ही चलना होगा।
1: अच्छा दादाजी, DRDO में भर्ती कैसे होती है, और इसमें भर्ती के लिए कौन कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं?
2: DRDO में भर्ती के लिए बेटा RAS रिक्रूटमेंट असिस्मेंट सेंटर, यहाँ साइंटिस्ट बी के लिए परीक्षा और इंटरव्यू होता है। इसके लिए गेट स्कोर बहुत जरूरी होता है। आम तौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के छात्र इसमें शामिल होते हैं। सेप्टेम, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट, इसके माध्यम से टेक्नीशियन,

0: डीआरडीओ ज्वाइन करना हो तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें गेट की तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा।
1: तो इंजीनियरिंग ही नहीं, ग्रेजुएट भी डीआरडीओ में जा सकते हैं दादाजी।
0: बिल्कुल बेटा, डीआरडीओ सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, पूरा सिस्टम है।
1: यहाँ इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स किस तरह से करवाए जाते हैं?
0: डीआरडीओ में एमटेक पीएचडी के लिए इंटर्नशिप के भी मौके होते हैं बेटा। आईआईटी नीट और बड़ी यूनिवर्सिटी के छात्र वहाँ प्रोजेक्ट करते हैं।
1: दादाजी, क्या मैं कॉलेज के दौरान भी डीआरडीओ में इंटर्न कर सकती हूँ?
0: क्यों नहीं बेटा, डीआरडीओ के दरवाजे मेहनती छात्रों के लिए हमेशा खुले हुए हैं।
1: दादाजी, क्या लड़कियाँ भी मिसाइल बना सकती हैं?
0: बिल्कुल, महिलाएं आज डीआरडीओ की ताकत हैं।
1: दादू, क्या आप महिला वैज्ञानिकों की कहानियाँ सुनाएंगे?
0: बिल्कुल। देखो बेटा, एक महिला वैज्ञानिक थी डॉक्टर टेसी थॉमस, जिन्हें लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। अग्नि 4 और अग्नि 5 प्रोजेक्ट के निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस पहली भारतीय महिला हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम लीड कर चुकी हैं।
1: अच्छा।
0: डॉक्टर गगनदीप कंग, जिनका बायो डिफेंस और मेडिकल रिसर्च में अहम योगदान रहा है। डॉक्टर शांति रामास्वामी, जो डीआरडीओ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की विशेषज्ञ। तो बेटा, लड़कियां ना सिर्फ मिसाइल बना रही हैं, बल्कि उन्हें दिशा भी दे रही हैं।
1: वाह दादाजी, फिर तो मैं भी मिसाइल साइंटिस्ट बनूंगी।
0: बिल्कुल बेटा, भारतीय वैज्ञानिकों इंजीनियरों की मेहनत का नतीजा है कि आज भारत ताकतवर और आत्मनिर्भर है।
1: दादाजी, और कोविड में डीआरडीओ ने जो काम किया उसके बारे में भी बताइए ना। सब कहते हैं कि उन्होंने बहुत कम समय में चमत्कार कर दिया था।
0: हाँ बेटा, वो समय था जब पूरी दुनिया जैसे थम गई थी, पर हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक दिन रात प्रयोगशालाओं में जुटे रहे। बहुत कम वक्त में उन्होंने डॉक्स वेंटिलेटर बनाया ताकि हर अस्पताल को मदद मिल सके। यूवी सैनिटेशन टनल्स बनाए ताकि सामान संक्रमण मुक्त रहे।
1: पीपीई किट्स, फेस शील्ड्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स भी इन्होंने ही डिजाइन किए थे।
0: हाँ बेटा, ताकि हमारे डॉक्टर और नर्स सुरक्षित रहें। याद रखो बेटा, डीआरडीओ सिर्फ हथियार नहीं बनाता, वो जीवन रक्षक तकनीक भी लाता है।
1: वाह दादाजी, डीआरडीओ के वैज्ञानिक तो असली योद्धा है। इनकी हर लैब, हर प्रयोग, हर शोध भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
0: हाँ बेटा, डीआरडीओ का सपना है कि भारत रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बने। हम अपने सैनिकों को दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक दें। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम में दुनिया से मुकाबला करें, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं बल्कि अपनी तकनीकें दुनिया को निर्यात करें। यही है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना।
1: दादाजी, अब तो मैं पक्का तय कर चुकी हूँ, मैं वक्त आने पर डीआरडीओ में वैज्ञानिक बनूंगी।
0: शाबाश मेरी बिटिया, यही तो चाहिए देश को, युवा और विज्ञान की संगत। पर एक मुश्किल है इसमें।
1: वो क्या दादाजी?
0: अगर तुम्हें कल कोई नया टॉपिक ना मिला तो तुम जरूर डीआरडीओ ज्वाइन कर लोगी। है ना? याद रखना बेटा, देश की सेवा सिर्फ सीमा पर खड़े होकर नहीं होती, कभी कलम से, कभी प्रयोग से, कभी विचार से भी देश की रक्षा होती है। हर युवा अगर अपने क्षेत्र में ईमानदारी और समर्पण से काम करे तो वही असली डिफेंस है, अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने मान की रक्षा करना।
1: जय हिंद दादाजी।
0: जय हिंद प्यारी बच्ची, जय हिंद और जय विज्ञान, जो हर राष्ट्र को सशक्त बनाता है।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का रेडियो नाटक देश के संस्थान, जिसमें आज हम बात कर रहे थे डीआरडीओ यानी विज्ञान से सुरक्षित भारत की। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का। आपके साथ हम थे आपके रेडियो सेट पर, मैं भगवती सक्सेना
0: और मैं दीपक नेमा।
2: लेखन किया स्वाति गिरी ने। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम याद करो कुर्बानी।
1: और अब वक्त है कार्यक्रम याद करो कुर्बानी का।
2: याद करो कुर्बानी।
1: वाराणसी या बनारस, धर्म परायणों की पुण्य नगरी। बनारस की पावन धरा में गंगा माई का पवित्र प्रवाह तो है ही, साथ ही इसकी पवित्रता ने आजादी के मतवालों को भी जन्म दिया है, पोषित किया है, जिन्होंने अपनी तमाम उम्र देश की आजादी के लिए बिना किसी शर्त के कुर्बान कर दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शचिंद्रनाथ सान्याल भी एक ऐसा ही नाम है, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने स्वर्णिम 20 साल ब्रिटिश जेलों में गुजार दिए। पूरे सान्याल परिवार का एक ही उद्देश्य था, भारत की स्वाधीनता। हरिनाथ सान्याल और वासिनी देवी सान्याल ने भी अपने रक्त से अपनी चारों संतानों को देशभक्ति के संस्कार दिए थे, या यूं कहें कि उन्होंने अपनी संतानों को सिर्फ वंदे मातरम का महामंत्र सिखाया था, और वो भी गर्भ से ही। शचिंद्रनाथ सान्याल का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। शचिंद्रनाथ के अन्य भाई रविंद्रनाथ, जितेंद्रनाथ और भूपेंद्रनाथ थे। बंगाल की क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सान्याल परिवार वचनबद्ध था, और उनकी सक्रियता का ही परिणाम था कि शचिंद्रनाथ के बड़े भाई रविंद्रनाथ जी को बनारस षड्यंत्र केस में नजरबंद की सजा मिली, तो छोटे भाई भूपेंद्रनाथ सान्याल को काकोरी कांड में 5 साल की कैद और तीसरे भाई जितेंद्रनाथ जी को सन 1929 के लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह के साथ अभियुक्त बनाया गया था। शचिंद्रनाथ सान्याल जैसे महान क्रांतिकारी को भी 2 बार काले पानी की सजा का पारितोषक मिला था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत की तमाम कोशिशों के बावजूद सान्याल परिवार के सिर से आजादी का जुनून कम नहीं हुआ, बल्कि जितनी कड़ी सजा मिलती रही स्वाधीनता का सुरूर और सिर चढ़कर बोलने लगा। आजादी की तलब और बढ़ती जा रही थी, वंदे मातरम तो रगों में लहू बनकर दौड़ रहा था।

शचीन्द्र नाथ सान्याल का प्रारंभिक दौर राष्ट्रवादी आंदोलन की परिस्थितियों में ही गुजरा। सन 1905 के समय में बंगाल विभाजन के बाद पूरा देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विरोधी हो गया था। विरोध की लहर ने उस समय बच्चों और नवयुवकों को देशभक्ति की शिक्षा और प्रेरणा देने का महान कार्य किया था। उस विरोध की हवा ने चाफेकर बंधुओं की तरह ही सान्याल बंधु भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रवादी धारा के साथ दृढ़ता के साथ खड़े थे। 1908 में पिता के निधन के बाद भी मात्र 15 साल की उम्र में ही काशी में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। साथ ही समिति को बंगाल के क्रांतिकारियों ने अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में स्थापित किया था। शचीन्द्रनाथ न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध होकर स्वयं तो आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन साथ ही पिता के सामने ही अपने तीनों भाइयों को भी इस मार्ग पर सहयात्री बनाकर चलने में वो सफल रहे थे। काले पानी की सजा के दौरान भी अपने क्रांतिकारी जीवन और समकालीन क्रांतिकारियों के जीवन साथ ही गतिविधियों पर भी अपने संस्मरण को भी कलमबद्ध किया जा रहा था। अपनी पुस्तक बंदी जीवन की भूमिका में शचीन्द्रनाथ जी ने स्वयं लिखा है कि जब मैं बालक ही था तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि भारतवर्ष को स्वाधीन किया जाना है और इसके लिए मुझे सामरिक जीवन व्यतीत करना है। इसी उद्देश्य को अपनाकर शचीन्द्रनाथ वैचारिक और व्यवहारिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। सान्याल जी सन 1913 में जब बंगाल की अनुशीलन समिति के नेताओं से मिलने गए तब शशांक मोहन, शिशिर जी और प्रतुल गांगुली जैसे महान क्रांतिकारियों से उनकी मुलाकात हुई और यहीं पर उनका परिचय हुआ वीरवर राज बिहारी बोस से। शचीन्द्रनाथ सान्याल जी की असाधारण कर्मशक्ति, सरलता, तत्परता और तीव्रता को भांपकर राज बिहारी बोस जी ने उन्हें लट्टू का उपनाम दे दिया। कूट कूट कर भरी विद्रोह की भावनाओं के साथ अदम्य क्रियाशीलता के चलते ही कई क्रांतिकारी साथी शचीन्द्रनाथ जी को बारूद से भरा अनार कहा करते थे। राज बिहारी बोस के अनन्य सहयोगी के तौर पर उनका आगे का क्रांतिकारी जीवन बढ़ता रहा। नवंबर सन 1914 में बोस जी और सान्याल जी एक साथ बम परीक्षण के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन जैसे ही दोनों ठीक हुए तो मिलकर संगठन का विस्तार कार्य फिर से करने लगे। विस्फोट की घटना के बाद दोनों क्रांतिकारियों की निकटता और मित्रता प्रगाढ़ हो गई। जी।

ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी सैन्य बगावत करने के उद्देश्य से बंगाल और पंजाब के क्रांतिकारी संगठनों की जिम्मेदारी जिन संगठनों ने संभाल रखी थी, उनके प्रमुख संयोजक थे रास बिहारी बोस और बोस जी के दाहिने हाथ थे शचिंद्र नाथ सान्याल। 21 फरवरी सन 1915 को सैन्य विरोध के जरिए देश को पूर्ण स्वराज दिलाने का निर्णय लिया गया, लेकिन कुछ गद्दारों और सरकार के भेदियों के कारण ब्रिटिश सरकार ने धरपकड़ और दमन चक्र चलाया और शचिंद्रनाथ सान्याल 26 जून सन 1915 को धोखे से हिरासत में ले लिए गए। फरवरी सन 1916 में कालापानी की सजा मिलने के बाद उन्हें आजन्म कारावास और सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश हुआ। 4 साल तक अंडमान की सेल्यूलर जेल में उन्हें सश्रम कारावास की सजा मिली, लेकिन जल्द ही रिहा भी कर दिए गए। दिल्ली के अधिवेशन में पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन रखा गया था, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह और उनके साथियों ने नाम बदलकर पार्टी का नाम हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक समाजवादी संगठन रख दिया। दिल्ली के इसी अधिवेशन में देश के नाम एक अपील जारी की गई, जिसमें संपूर्ण भार के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य और भविष्य में संपूर्ण एशिया का महासंघ बनाने का विचार भी प्रस्तुत किया गया और रिवॉल्यूशनरी लिखा पर्चा एक ही दिन में रंगून से पेशावर तक बांट दिया गया। पर्चे के लिखने और बंटवाने के आरोप में फरवरी सन 1925 को 2 वर्ष की फिर से उन्हें सजा हो गई। जेल से छूटने के बाद काकोरी कांड केस में उन्हें फिर हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा चला और दोबारा काले पानी की सजा उन्हें दे दी गई। साल था सन 1937-38 जब राजनैतिक कैदियों को रिहा किया गया, तो उनमें शचिंद्रनाथ का भी नाम था, लेकिन फिर भी उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया। कठिन परिश्रम, कारावास और फिर समय की मार, इन सब चिंताओं के कारण वो क्षय रोग से पीड़ित हो गए। तिमारदारी के बावजूद इस नश्वर शरीर ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया। 7 फरवरी सन 1942 को भारतीय स्वतंत्रता का दिव्य स्वप्न अपने दिल में संजोए अपने जर्जर शरीर को छोड़कर महान क्रांतिकारी वीरवर शचिंद्रनाथ इस संसार सागर से विदा हो गए। महाशक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य से मोर्चा लेने वाले स्वतंत्रता के इन वीर सैनिकों की जीवन कथाएं इतनी शौर्यपूर्ण और त्याग बलिदान की भावनाओं घटनाओं से परिपूर्ण है कि एक उच्च कोटि की काव्य कथा हृदय में स्थायी प्रभाव डाल देती है। हमारे इतिहास की ये ऐसी अमूल्य नीति है जो युगों युगों तक हमारे लिए प्रेरणा देने का सशक्त सामर्थ्य रखती है। कोटि कोटि नमन हमारे उन वीर जवानों को।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। अब आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए और सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। याद करो कुर्बानी।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर सो।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है। सुनकर

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं भारत भवन में, जहां सदा नीरा समागम का समापन हुआ 2 जून को, जिसमें सबसे पहले भगेली गायन की प्रस्तुति दी गई। कलाकार थीं शीला त्रिपाठी और उनके साथी।
1: आप सभी को मेरा और मेरी टीम की तरफ से प्रणाम नमस्कार। बहती सरिता नीर की करे सदा उपकार, रही मन प्यासे जगत में सबका जीवन आधार। सदा नीरा कार्यक्रम में पधारे आप सभी गुणी श्रोताओं का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सदा नीरा हमारे लोक विरासत को सहेजने का सुंदर प्रयास है। जल हमारी आस्था, परंपरा, संस्कृति और जीवन का अभिन्न अंग है। जल है तो जीवन है। हमारे बघेलखंड में एक कहावत है कि बिन पानी सब सून। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे प्रदेश में है, मध्य प्रदेश हमारा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ नदियों को माइका कहा जाता है। यहाँ बहुत सारी नदियाँ प्रकट हुई हैं, तो मैं बिंद क्षेत्र से आई हूँ और बिंद क्षेत्र में जो अमरकंटक नदी है वो हमारे मध्य प्रदेश बिंद क्षेत्र से ही होके निकली है, जो सभी के आस्था और विश्वास का केंद्र है। आज मैं अपने बघेली लोकगीतों के माध्यम से आपको ऐसी यात्रा पे ले चल रहे हैं जिनमें नदियों की कलकल है, कारे कारे बदरा भी है, सावन की लड़ियां भी हैं, और हम नर्मदा जी में जल भरने भी जाएंगे और जमुना जी से भी पानी लेकर आएंगे।

और सदानीरा समागम के आखिर में नाट्य प्रस्तुति रही नर्मदा हर कंकर शंकर की, जिसका निर्देशन किया कुलवीर सिंह ने।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिन्होंने कभी उंगली पकड़ के चलना सिखाया,
1: जिन्होंने हमें जीवन में आसमान की बुलंदियों को छूना सिखाया।
0: अब हम बने उनका सहारा जो पहले थे हमारा सहारा।
1: बचपन में जिन्होंने दी हमें खुशियाँ, वृद्धावस्था में दें हम उन्हें खुशियाँ।
0: अपने वृद्धजनों के प्रति समर्पित रहें, वृद्धजनों का सम्मान करें।
1: शुरुआत आज से ही करें, अपने घर से ही करें।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।
2: पर

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए सुने कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
1: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद आज हमारे बीच नहीं है, पर आज के इस अशांत काल में हमें स्वामी जी बहुत याद आते हैं। उनकी कही हुई बातें आज और भी ज्यादा प्रासंगिक प्रतीत होती हैं। उनका कहना था,
1: आज की हर समस्या का समाधान हमारे अतीत में निहित है। हमें अपने अतीत से, पूर्वजों से, उनके बताए गए समाधानों से अपना रास्ता खोजना होगा।
2: स्वामी जी अमेरिका प्रवास के दौरान इस सत्य से परिचित हुए थे कि पश्चिम में आज जीवन चमकदार है, चकाचौंध कर देने वाला है। पर वो सभी बातें सतह ही हैं, क्योंकि उनकी नींव अतीत में नहीं है, वे वर्तमान में जीते हैं। उनका इतिहास मात्र 400-500 साल पुराना है। उस अतीत में हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान समाहित नहीं है, हमारे हजारों सालों का अनुभव वहां नहीं दिखता। वहां प्रज्ञा नहीं, आध्यात्मिकता नहीं, संतोष नहीं है, तो केवल सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दौड़।
0: वहां जाकर स्वामी जी ने जब भारतीय मानसिकता, अनुभव और आध्यात्मिक ज्ञान की बातें सबको बताई, तो वो अमेरिका निवासियों के लिए एक नई उपलब्धि थी, क्योंकि उनके पास अतीत से सीखने लायक कोई बात नहीं थी। वहां जाकर स्वामी जी ने अनुभव किया था कि पश्चिम से हमें विज्ञान की नई बातें सीखनी होंगी, भारत में शिक्षा का प्रसार करना होगा, पर अपने अतीत को भुलाकर नहीं। उन्हें युवकों पर भरोसा था, नई पीढ़ी का उन्होंने आह्वान किया था। वे नई पीढ़ी को ही भावी भारत का कर्णधार मानते थे, उन्हें अपने आदर्शों से आलोकित करना चाहते थे। वे कहते थे,
1: बहती हुई नदी की धारा ही स्वच्छ, निर्मल और स्वास्थ्यप्रद रहती है। उसकी गति अवरुद्ध हो जाने पर उसका जल दूषित और अस्वास्थ्यकर हो जाता है। नदी यदि समुद्र की ओर चलते चलते बीच में ही अपनी गति खो बैठे तो वो वहीं पर बद्ध हो जाती है। प्रकृति के समान ही मानव समाज में भी एक सुनिश्चित लक्ष्य के अभाव में राष्ट्र की प्रगति रुक जाती है, और सामने यदि सुनिश्चित लक्ष्य हो तो आगे बढ़ने का प्रयास सफल और सार्थक होता है। हमारे आज के जीवन के हर क्षेत्र में ये बात याद रखने योग्य है। अब इस लक्ष्य को निर्धारित करने के पूर्व हमें विशेष रूप से भारत के चिंतन, इतिहास, आदर्श तथा आध्यात्मिकता का ध्यान रखना होगा।
2: स्वामी जी ने इसी बात पर बल दिया था कि देश की सनातन परंपरा तथा आदर्शों के प्रति सचेत न होने पर अव्यवस्थित विकास होगा, और संभव है कि आखिरकार वो राष्ट्र को प्रगति के स्थान पर पतन की ओर ले जाए। उन्होंने कहा,
1: आज के युवा समाज को, जिसमें देश का भविष्य निहित है और जिसमें जागरण के चिन्ह दिखाई दे रही हैं, अपने जीवन का एक उद्देश्य ढूंढ लेना चाहिए। हमें ऐसा प्रयास करना होगा ताकि उनके भीतर जगी हुई प्रेरणा तथा उत्साह ठीक पथ पर संचालित हो। नहीं तो शक्ति का ऐसा अपव्यय या दुरुपयोग हो सकता है जिससे मनुष्य की भलाई के स्थान पर बुराई ही होगी। भौतिक उन्नति तथा प्रगति अवश्य ही प्रशंसनीय है, परंतु देश जिस अतीत से भविष्य की ओर जा रहा है, उस अतीत को अस्वीकार करना निश्चय ही निर्बुद्धिता का परिचायक है। अतीत की नींव पर ही राष्ट्र का निर्माण करना होगा। युवा वर्ग में यदि अपने विगत इतिहास के प्रति कोई चेतना न हो तो उसकी दशा प्रवाह में पड़े लंगरहीन नाव के समान होगी। ऐसी नाव कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती। इस महत्वपूर्ण बात को सदैव स्मरण रखना होगा। मान लो कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु यदि हम किसी निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर नहीं जा रहे हैं तो हमारी प्रगति निष्फल रहेगी।
0: स्वामी जी को आधुनिकता से कोई बैर नहीं था। आधुनिकता को वे मन से समर्थन देते थे, परंतु उनका मत था कि आज के युवा आधुनिकता के प्रवाह में बह ना जाएं, वे विवेक से काम लें।
1: आधुनिकता कभी कभी हमारे सामने चुनौती के रूप में आ खड़ी होती है। इसका तात्पर्य यह है कि आधुनिक समाज राष्ट्रहित के लिए उसकी शक्ति का उपयोग करने के प्रयास में अंधकार में भटकता रहता है। आधुनिकता की इस शक्ति को एक सुनियोजित महान लक्ष्य की ओर परिचालित करना होगा।
0: इसी कारण स्वामी जी ने कहा है कि युवा वर्ग के सम्मुख एक लक्ष्य स्थापित करना होगा और इस ओर ध्यान देना होगा कि युवकगण उत्साह और प्रेरणा के साथ अपनी क्षमता का सदुपयोग कर सके। युवा शक्ति के भीतर जो सक्रियता और उद्दाम भावावेग देखने को आता है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। वे कुछ करना चाहते हैं और ये उसी का लक्षण है। उनके नेतृत्व का भार जिन वयस्क लोगों पर है, उन्हें इस बारे में सोच विचार करना चाहिए।
2: हमारे समाज में हर नई पीढ़ी को बुरा समझने की परंपरा सी बन गई है। पुरानी पीढ़ी युवकों की नई सोच, नई कार्य प्रणाली की हमेशा आलोचना करती रही। स्वामी जी को ये आलोचना पसंद न थी।

0: निषेध की सीमा में आबद्ध न रखकर उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखाना होगा। प्रायः देखने में आता है कि वयस्क लोगों को युवा वर्ग के केवल दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। वयस्कों की गलती ये है कि वे जानने का प्रयास ही नहीं करते कि युवक युवतियां क्या सोचते हैं तथा क्या करना चाहते हैं। इसलिए वयस्क गण युवा वर्ग की निंदा करते हैं और उसके फलस्वरूप युवा वर्ग भी बड़ों की उपेक्षा करता है, उनकी परवाह नहीं करता। तब मामला आग से खेलने जैसा हो जाता है। जो आग घर में दीपक बनकर प्रकाश फैलाती है, वही सब कुछ जलाकर राख भी कर सकती है। यौवन के भीतर जो शक्ति है वो भली भी नहीं है और बुरी भी नहीं है। ठीक उपयोग करने पर वो कल्याणकारी होगी तथा दुरुपयोग करने पर विध्वंसक।
1: स्वामी जी ने तरुणों की प्राण शक्ति को सही रूप में पहचाना था। वे उस अनंत ऊर्जा को भारत के नव निर्माण के कार्य में लगाना चाहते थे।
0: एक प्रचंड शक्ति को किसी सीमा के भीतर आबद्ध रखने पर उसमें विस्फोट हो जाता है। युवा वर्ग के भीतर जो प्रबल प्राण शक्ति है, उसे ठीक पथ पर न चला पाने से जो संकट उत्पन्न होगा, उससे पूरा देश तथा समाज प्रभावित होगा। कभी कभी वयस्कों की अवस्था वृद्ध तालाब के समान हो जाती है। वे सोचते हैं कि उन्हीं का सोचना सही है और अपने समय में वे जो कुछ करते आए हैं, आज के युवकों को भी वही करना चाहिए। अपनी युवावस्था की बातें यदि उन्हें स्मरण हो तो अवश्य ही वे स्वीकार करेंगे कि उनका वो काल संघर्षहीन नहीं था। उनमें भी उपाम तरंगे उठी थी और जीवन पथ पर वे ज्यो ज्यो आगे बढ़ते गए, त्यों त्यों अनुभव के फलस्वरूप उनके दृष्टिकोण में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आता गया है। अतः प्रज्ञा वयस्क गण यदि अपने पुराने अनुभवों के आलोक में वर्तमान युवा वर्ग को देखें और उसी अनुभव के आधार पर सहानुभूति और ममता के साथ नवयुवकों के भाव समझने का प्रयास करें तो इसका अच्छा फल होगा।
2: उन्होंने नवयुवकों को भी समझाया था कि जो भी पुराना व प्राचीन है वही खराब है, ऐसी बात नहीं। हर पुरानी प्रथा को नकारने की जो प्रवृत्ति नई पीढ़ी में दिखती है वो ठीक नहीं। प्राचीन अनुभव हमारे धरोहर हैं, उनका आदर करना चाहिए। उन्होंने कहा,
0: युवकों को समझना होगा कि वयस्कों की भी आवश्यकता है। पिछले अनुभवों की एक धारा को हम वहन करते हैं जिसे संस्कार कहा जाता है, और ये संस्कार ही हमारी मानसिकता प्रवृत्तियों का उद्गम है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र का भी एक समष्टि अतीत होता है। पूरे राष्ट्र का एक पूंजीगत अनुभव होता है और उसी की नींव पर वो अपनी भावी प्रगति का एक मार्ग निर्धारित कर लेता है। आज जो लोग तरुण हैं, उन्होंने अपनी यौवन की शक्ति से चलना आरंभ किया है। इसलिए अनुभवी वयस्कों को इस ओर ध्यान देना आवश्यक है कि कहीं वे दिग्भ्रांत होकर अंधे के समान आगे न बढ़ जाएं, पथ भ्रष्ट न हो जाएं। एक पथ प्रदर्शन नितांत आवश्यक है और वो सतर्कता के साथ उनके सम्मुख रख देना होगा।
1: सुनने में आता है कि हमारे तरुणों में नैतिक मूल्य बोध का अभाव है। वे उद्दंड हैं, नास्तिक हैं इत्यादि। संभवतः हम लोग जब तरुण थे तो हमारे वयस्क लोग भी हमारे विषय में ऐसी ही बातें कहा करते थे। उनकी भी ऐसी धारणा थी कि उनका समय स्वर्ण युग था और अब हर जगह अवनति तथा पतन दिखाई दे रहा है। फिर वर्तमान में हम लोग भी उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं कि पहले अर्थात हमारे यौवन काल में सब कुछ ठीक था, परंतु अब सब बिगड़ गया है। यदि ऐसा ही है तो वर्तमान पीढ़ी के जन्मदाताओं अर्थात हम पर ही उनमें ये विश्वास तथा मूल्य बोध लौटा लाने का उत्तरदायित्व है।
2: स्वामी जी ने हमें सावधान किया है कि प्राचीन का विनाश करने से उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं होता। पुराना सब कुछ त्याज्य है, ऐसा दृष्टिकोण अनुदार व संकीर्ण है। हम अपने अतीत की नींव पर खड़े हैं। अतीत ने ही हमें वर्तमान तक पहुंचाया है और ये देखना वर्तमान पीढ़ी का कर्तव्य है कि हमारे भावी वंशधर और भी अधिक सुदृढ़ नींव पर खड़े रह सके। इस विषय में सावधान रहना, अतीत वर्तमान तथा भविष्य के सभी लोगों का कर्तव्य है।
1: जीवन एक प्रवाहमान धारा है और राष्ट्रों का इतिहास भी वैसा ही है। अतीत से ही वर्तमान का उद्भव हुआ है। इसी प्रकार वर्तमान ही हमें भविष्य के द्वार तक पहुंचा देगा। बड़ी सावधानी तथा मनोयोग के साथ वर्तमान तथा अतीत का अनुशीलन करके युवा वर्ग का पथ प्रदर्शन करना होगा और ये भी देखना होगा कि वो भविष्य के साथ सुसंगत हो। आधुनिकता की यही सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है। तरुणाई की उपाम शक्ति तरुणों को अशांत कर डालती है। उस शक्ति को इस प्रकार परिचालित करना होगा कि उनकी इस शक्ति प्रेरणा तथा उत्साह का सदुपयोग हो और वो राष्ट्र एवं समग्र विश्व के कल्याण में नियोजित हो।
2: स्वामी जी ने बताया है कि अतीत की दृढ़ भित्ति रहे तभी समस्या का उचित समाधान किया जा सकता है, परंतु उसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि अतीत कहीं तरुणों के विकास का पथ अवरुद्ध न करे। अतीत भी वर्तमान के साथ सामंजस्य रखकर अग्रसर हो। संभव है कि पहले के लोग कुछ मार्गदर्शन कर गए हों, उसमें कुछ फेर बदल किया जा सकता है, किंतु पूर्णतया उस पथ को त्याग कर अलग पथ पर चलने का प्रयास उचित नहीं।
1: स्वामी जी के मतानुसार इससे शक्ति का केवल अपव्यय होता है। उनका कहना है कि गंगा की धारा को बलपूर्वक ही उसके उद्गम गोमुख तक लौटाया नहीं जा सकता, तथापि उसे ऐसे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है कि वो समाज तथा देश के लिए कल्याणकारी हो। नहीं तो वो प्रवाह भले बुरे सब कुछ को बहा ले जाएगा और विध्वंसक होकर भविष्य के लिए घातक सिद्ध होगा। स्वामी जी का मत था,
0: अतीत से प्राप्त अनुभव तथा ज्ञान को आयात करके युवा वर्ग भविष्य की समृद्धि के लिए उसका सार्थक उपयोग करे, यही कार्य महत्वपूर्ण है। युवा वर्ग में अतीत के प्रति उदासीनता का भाव दिख रहा है। समाज की वर्तमान व्यवस्था से वे संतुष्ट नहीं है, वे इसमें परिवर्तन चाहते हैं। उन्हें जो अनुभव हो रहे हैं वो निश्चय ही उसी के आधार पर अतीत का मूल्यांकन करेंगे, पर देश के विगत अनुभव के साथ सामंजस्य रखकर उनके अनुभव को भी संशोधित करने की जरूरत है। बहुमुखी विश्वव्यापी अत्याधुनिक भावधारा का ग्रहण निंदनीय नहीं, अपितु इसे ग्रहण करने की मानसिकता प्रशंसनीय ही है। साथ ही अपने पांव के नीचे की मिट्टी को भूलने से काम नहीं चलेगा, और वो मिट्टी है भारत का इतिहास, भारत की असाधारण आध्यात्मिक शक्ति। प्रारंभ से आध्यात्मिक जीवन ही इस देश का लक्ष्य रहा है। हमें लगता है कि युवक गण इसके विरोधी हैं, जड़वादी हैं। उनका उद्देश्य जागतिक भोग सुख है, पर यह भी पूर्णतः सत्य नहीं है। संभव है कि हम उन्हें ठीक ठीक परिचालित न कर सके हों, उनके सम्मुख एक ऐसा सुस्पष्ट आदर्श न रख सके हों जिसकी ओर वे अपनी अदम्य प्राण शक्ति को प्रवाहित कर पाते।
2: अतीत तथा भविष्य के बीच एक सुदृढ़ संयोग सूत्र की जरूरत है, और युवा वर्ग ही वो संयोग सूत्र है। जब ये अपनी आशा आकांक्षाएं व्यक्त करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें सर्वदा मना करना, रोक देना उचित नहीं। उन्हें इस प्रकार से शिक्षित कर लेना होगा कि वे देश के उज्ज्वल भविष्य को गढ़ डालने की आशा आकांक्षा का पोषण करें, और अतीत से अनुभव लेकर ही ऐसी शिक्षा हम उन्हें दे सकेंगे। इसके बाद हम ध्यान पूर्वक देखेंगे कि वे किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार युवा वर्ग को ठीक मार्ग पर चला पाने से देश अपने गौरवमय भविष्य की ओर अग्रसर होगा।
1: हम लोग बैलगाड़ी के युग से काफी दूर निकल आए हैं। संभवतः इस समय हम जेट युग की सीमा पर हैं और इसके बाद रॉकेट युग में भी पहुंचेंगे। तब हम केवल चांद पर ही जाने की बात नहीं सोचेंगे, बल्कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह और उसके भी पार जाने की बात सोचेंगे। तात्पर्य यह है कि हम जहाँ हैं वहीं सीमाबद्ध नहीं रह सकते। प्राचीन ऋषियों ने कहा है, चरैवेति, बढ़े चलो, हम वही प्रगति चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा है,
0: लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको मत, उठो जागो, अभीष्ट की प्राप्ति हुए बिना रुको मत। हम लोग आलस्य प्रमाद विलास आराम में तंद्रा मग्न हैं, भूल रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। वृद्ध हो जाने के कारण जो लोग अपनी शक्ति खो बैठे हैं वे सोचते हैं कि कोई उनकी निद्रा में विघ्न ना डाले, और तरुणों का उद्दाम उत्साह उनकी इस शांति में बाधा डाल रहा है। पर उन्हीं लोगों ने तो इन्हें जन्म दिया है, अतः ऐसा दृष्टिकोण उचित नहीं है। उन्हें यह स्मरण रखना होगा कि इन तरुणों को उनके पथ पर उत्साहित करना तथा अपने अनुभव से उनका पथ प्रदर्शन करना उन्हीं का उत्तरदायित्व है।
1: स्वामी जी कहा करते थे,
0: हमने अनेक भूलें की हैं, हमारे सुदीर्घ इतिहास में कई उत्थान पतन हुए हैं। सभी राष्ट्रों के इतिहास में ऐसा चक्रवात उत्थान पतन होता रहा है, कहीं भी निरंतर समृद्धि देखने में नहीं आती। उत्थान पतन के बावजूद हमारी ये प्राचीन जाति अब भी जीवित है। अन्य अनेक जातियों का उत्थान हुआ है, उन्होंने धूमकेतु के समान इतिहास के पन्नों को आलोकित किया है, और फिर धूमकेतु के समान ही क्षणिक आभा दिखाकर विलुप्त भी हो गए हैं। परंतु हमारा देश अति प्राचीन है, यह विश्व के प्राचीनतम देशों में से एक है, और इसके अतीत की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए कि उसके अतीत के दृष्टिकोण में एक प्रकार की सुसंगति एवं स्थिरता थी, और इसलिए वो पृथ्वी तल से पूर्ण रूपेण लुप्त नहीं हुआ। यूनान, रोम तथा मेसोपोटामिया आदि महान सभ्यताएं कभी इतिहास के पन्नों में चमक रही थी, और फिर वे अदृश्य भी हो गई हैं। परंतु भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ।
2: स्वामी जी इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे। विश्व का प्राचीन इतिहास पढ़कर उन्होंने अपना मत बनाया था और हमें प्राचीन भारतीय परंपराओं की दुहाई दी थी। उन्हें भारत पर पूर्ण विश्वास था कि चाहे कितने ही आंधी तूफानों का सामना करना पड़े, वो जरूर फिर से उठ खड़ा होगा। भारत का विनाश संभव नहीं है।
0: भारत वर्ष की सनातन जीवन धारा आज भी अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है। यदि कभी ये धारा अधोगामी हुई है, जब भी लगा है कि इस जाति का अब पृथ्वी से लोप हो जाएगा, तभी न जाने कहां से एक नवीन शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उसी शक्ति के आधार पर भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा को बारंबार पुनर्जीवन प्राप्त हो रहा है। भारत की अतीत आध्यात्मिक परंपरा उसकी सभ्यता की नींव के समान है। उसके प्रति अटल श्रद्धा रहे बिना किसी नवीन भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता, करने से भी वो स्थायी ना होगा। यह भूलना हमारे लिए कभी उचित ना होगा कि भारतवर्ष असाधारण ऊर्जा एवं असीम शक्ति का आधार है, और इसी कारण युवा वर्ग के लिए अतीत का अनुशीलन अति महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा वे समझ सकेंगे कि पहले हम रूया थे, और उसी के आधार पर वे अपना भविष्य भी गढ़ डालने का प्रयास करेंगे। इससे भारत के प्राचीन विरासत के प्रति हमें गर्व बोध होगा, और हम आश्वस्त भी हो जाएंगे। धन बल या बाहुबल को नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बल को ही भारत सर्वाधिक महत्व देता आया है।
1: किसी किसी का कहना है कि धर्म ही हमारे जीवन की अधोगति का कारण है, परंतु स्वामी जी कहते हैं,
0: तुम लोगों ने अतीत को ठीक से नहीं समझा, धर्म को ठीक से नहीं समझा। धर्म ने ही हमें जीवित रखा है, और यदि हम धर्म को ना भूलें तो अब भी वो हमारी रक्षा करेगा।
2: तभी तो वे हमें बार बार याद दिलाते थे उपनिषद की ये अमर वाणी,
0: उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो लक्ष्य तक पहुंचे बिना रुको नहीं, निबोधत अर्थात सत्य को जानो। अंधकार से आलोक का प्राकट्य नहीं होता, अतीत के भारत वर्ष से प्रकाश का विकिरण हो रहा है, और वही हमारा पथ प्रदर्शक है।
1: इसलिए तरुणों के प्रति स्वामी जी का आह्वान है,
0: अपनी शक्ति को व्यर्थ बर्बाद न होने देना। अतीत की ओर देखा, जिस अतीत ने तुम्हें अनंत जीवन रस प्रदान किया है उससे पुष्ट हो। यदि अतीत की परंपरा का सदुपयोग कर सको, उसके लिए गौरव का बोध कर सको, तो फिर उसका अनुसरण कर अपना पथ निर्धारित करो। वो परंपरा तुम्हें दृढ़ नींव पर प्रतिष्ठित करेगी, और इसके फलस्वरूप तुम देखोगे कि देश सामंजस्यपूर्ण समृद्धि की दिशा में अग्रसर हो रहा है। इसी विधि से अपेक्षाकृत अत्यल्प समय के भीतर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकेगा। वैज्ञानिक गण नए नए उपायों की खोज में तरह तरह के परीक्षण निरीक्षण किया करते हैं, परंतु वे भी क्या उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त अतीत काल की प्रज्ञा पर निर्भर नहीं करते? अणु का आविष्कार आकस्मिक रूप से नहीं हो गया, अनेक युगों के अनेक वैज्ञानिकों द्वारा जी तोड़ खोजों के बाद अंततः वर्तमान शताब्दी में आणविक शक्ति के अस्तित्व का पता चला है। उसी प्रकार इस क्षेत्र में भी हमें अपने अपने पूर्ववर्तियों के प्रयास को स्मरण रखना होगा।
2: स्वामी जी ने और भी कहा है कि उन्नति की प्रथम सीढ़ी स्वाधीनता है। स्वाधीनता के अभाव में हम बद्ध हो जाते हैं और इससे क्रमशः हमारा विनाश अवश्य संभावी है। इसीलिए युवकों को पूर्ण स्वाधीनता देनी होगी, किंतु साथ ही उनके पथ के निर्धारण में सहायता भी करनी होगी। युवकों को केवल स्वामी जी की ये चेतावनी याद रखने की आवश्यकता है कि वे युगों से संचित अनुभवों के भंडार से दृष्टांत लेकर लाभ उठाएं। इस महान उत्तराधिकार को स्वीकार करना उनका परम सौभाग्य है।
0: युवक गण अशांत तथा उपाम होते हैं और ये उनकी प्राण शक्ति का परिचायक है। उन्हें पग पग पर निषेध की डोरी से बांधकर अच्छा लड़का बनाए रखने से वे आगे नहीं बढ़ सकेंगे, बल्कि उन्हें और भी अशांत होने को प्रोत्साहित करना होगा। हम कहीं उन्हें पीछे से पकड़े ना रहें। नवीन बंदरगाह की ओर उसकी यात्रा शुरू हो गई है। उनके पाल में हवा लग रही है। वयस्कों का कार्य है उन्हें यात्रा पथ में दृढ़ बनाए रखने में सहायता करना, ताकि वे कहीं दिशा ना भूल जाएं। तभी आज के युवक हमारे अतीत की धरोहर को और भी समृद्ध कर सकेंगे। उनके मार्ग में मेरा आशीर्वाद तथा शुभकामनाएं सदैव उनके साथ रहेंगी।
1: एक नए भारत की